0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी हैं कुशादा दामनों दिल और जबी। लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये नुसरत बलोच।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता-ए-पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का सा, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.
2: Cook Studio, Season 15. Baby.

101 FM。

101 FM。

0: Skylink with FM 101.
1: To satisfy your need for more music.
2: This is FM 101.
3: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।
4: FM 101 available. Shabba.

जनाब टुडे इज फ्राइडे और जुम्मे के दिन क्या हुआ करता है? नॉर्मली हम लोग जो हैं वो नमाज की तैयारी के साथ ही ऑफिसेस के लिए निकलते हैं, क्योंकि जब हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो फिर जब जुम्मा ब्रेक होती है तो डायरेक्टली जो है वो नमाज के लिए जाया जाता है। तो एक बड़ी अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह सवेरे सब बड़े तैयार श्यार होकर इत्र वाली खुशबू परफ्यूम्स लगा के सब शलवार कमीज पहन के ऑफिस आते हैं, अच्छा लगता है। तो आज आपका भी ऐसा कोई प्लान है तो जरूर बताइएगा हमें कि आप जुम्मे की तैयारी कैसे करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो शलवार कमीज नहीं भी पहनते, मेरी तरह मैं बहुत कम पहनता हूँ, ईद के ईद पहनता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं शलवार कमीज में फंस सा गया हूँ, जबकि नॉर्मली शलवार कमीज में लोग बहुत इजी फील करते हैं, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। शायद मैंने बहुत ज़्यादा कभी पहना नहीं है या बचपन में मुझे इतना पहनाया नहीं गया तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यकीन करें शलवार कमीज एक बहुत ही खूबसूरत लिबास है, बहुत प्यारा लगता है पहनावा। अब वो पहनावा क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि आप जो है वो खुद अपना बहुत ख्याल रखते हैं, अपने अपने आप को मेंटेन रखा है, बॉडी शेप अच्छी हो ना अगर इंसान की तो उस पर कोई भी चीज़ पहनी हुई जिप्तन की भी अच्छी लगती है। तो अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए सुबह सवेरे। अब तो मौसम बहुत अच्छा है और ये तो बेस्ट मौसम है कि आप सुबह सवेरे उठ के पहले एक्सरसाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज करने के लिए क्या कुछ करना है, इसके लिए बहुत सारी एप्स जो हैं वो आपको मिलेगी एंड्रॉइड पे भी और आईओएस पे भी, आप उसको डाउनलोड कीजिए, देखिए कि किस तरह से जो है वो आपकी बॉडी टाइप के हवाले से आपको बताया जा रहा है कि आपने अपने बॉडी को कैसे शेप में लाना है। तो ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हो जाए, डाइट अच्छी लें और फैट कम कर दें, ये भी अच्छी बात है। बहरहाल आज मैं बहुत नींद में हूँ क्योंकि घर शिफ्ट कर रहे थे काफी दिनों से, फाइनली हमने कर लिया और फिर जो है वो इतना ज्यादा काम था कि रातों को जाग जाग के सामान इधर उधर करना और सब कुछ, लेकिन फाइनली हम लोगों ने जो है हमें एक अच्छी जगह घर मिला, हम लोगों ने चेंज कर लिया। तो वो बहुत सारे लोग जो कि मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि सहल भी रिवेका भी कह रही थी जब हमारे प्रोग्राम में ये बात निकली थी कि मैंने घर मूव करना है, चेंज करना है, तो उनको मैं बता दूं कि फाइनली ये डिसीजन हो चुका है और हमने कर लिया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआएं दी और बेस्ट विशेस दी। बहरहाल जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगर अभी आप उठे हैं तो आपको कहेंगे खुशामदीद अपने प्रोग्राम में और ट्यून इन किया है तो वेलकम जी वेलकम। प्रोग्राम में शामिल करूंगा आज की पहली आवाज एंड द ट्रैक इज

Alright जी, welcome back once again. And अभी मैं कुछ बात करने वाला हूँ जनाब आपकी मॉर्निंग की ट्रैफिक और कह लें कि रोड एटिकेट्स के हवाले से. देखिए सब सवेरे सबको बहुत जल्दी होती है. उसकी जल्दी की वजह क्या होती है कि सबने टाइम पे पहुंचना होता है. हर किसी के ऑफिस के अपने अपने रूल्स हैं, हर किसी इदारे के अपने अपने तौर तरीके हैं. बहुत सारे लोग जो हैं अगर वो टाइम पे ना पहुंचें तो उनको कोई जो है वो लिवरेज नहीं मिलती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर टाइम पर ना पहुँचें तो उनको कुछ कहा नहीं जाता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि टाइम पे पहुंचना. टाइम पे पहुंचने के लिए फिर आपको थोड़ा सा अर्ली उठना पड़ता है और थोड़ा सा मार्जिन रख के घर से निकलना पड़ता है. लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह सवेरे बहुत ही 11th आर पे घर से निकल रहे होते हैं, और उनको पता भी होता है कि ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक होगा और तमाम लोग जो है वो सुबह सड़कों पर मौजूद होते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि टाइम से जगह मिल जाएगी और आप निकल जाएंगे. तो फिर क्या होता है कि आप हो जाते हैं लेट, और लेट होने पर आपकी जो है वो डिडक्शन होती है, और वो डिडक्शन फिर आपको तकलीफ दे रही होती है, और फिर उस पर आप क्वेश्चनिंग भी कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल राइट हो रही होती है. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि इनका ख्याल रखा जाए. रोड एडिकेट्स की बात करूँ तो रोड एडिकेट्स के हवाले से आपने क्या करना होता है कि अब जल्दबाजी में आप जो है वो क्या करते हैं, लेंस तोड़ते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं, अपना चलान भी करवा लेते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गैर कानूनी और गलत तरीक़ेकार से हैं. तो मॉर्निंग ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए और अपने आप को जल्दी पहुंचाने के लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए. मार्जिन 2-4 मिनट का नहीं होता है, मार्जिन कम से कम भी 15 मिनट का होना चाहिए. आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपका नुकसान होता है. सुबह घर से निकलने से पहले कोशिश करें अपनी व्हीकल्स को एक दफा देख लें, बल्कि रात में ही चेक करें कि सुबह आपने जाना है तो गाड़ी में अब टायर का प्रेशर ठीक है, हवा का एयर प्रेशर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी में आपने पानी डाला था कि नहीं, ब्रेक चेक करें. ये छोटी छोटी चीजें हैं. मैं नहीं कह रहा कि ऑयल चेक करने बैठ जाए, चीज चेक करने बैठ जाए, वो आपको मंथली चेक कराना होता है. तो ये तमाम चीजें जो है ये बहुत ख्याल करनी पड़ती हैं. भारल जी, हमने पोस्ट जो है वो हवाले कर दी थी हमारे कोऑर्डिनेटर साहब के, लेमी चेक के हमारी पोस्ट जो है वो मौजूद है. यस, बिल्कुल आ चुकी है, और अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं है इस पे, तो आप पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, हम प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे. प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ अभी मैं एक और गाना, और जो गाना मैं प्ले करूंगा आपके लिए है हारून का महबूबा. सो हियर वी गो.

राइट, वेलकम बैक वंस अगेन। 8:23 हुए, साथ हैं आप सुन रहे थे महबूबा बाय हारून। और अभी मैं एक चीज नोट कर रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिसमें बताया जा रहा था, बोला जा रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो ज्यादा बेहतर होती है, लोकल मार्केट्स में जाकर आपको जो है शॉपिंग करना बेहतर लगता है। अच्छा, वैसे आजकल देखा जाए ना तो जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसको ज्यादा तरजीह हासिल है। घर बैठे आप हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, मंगवा लेते हैं, आपके डोर स्टेप्स पे पहुंच जाती हैं। अब चाहे वो फूड आइटम हो या कोई ग्रॉसरी आइटम्स हो या कोई भी चीज हो, तो ये चीज जो है वो बड़ी अच्छी है कि आपको जो है सब चीजें आपके डोर स्टेप पे मिलती हैं। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिसमें, अब जैसे मैं हूं, मैं कपड़े और जूते नहीं मंगवा सकता मार्केट से, क्योंकि मुझे कभी भी जो साइज है वो उसके इश्यूज बनते हैं, मुझे कभी भी सही नहीं आते। तो इसके लिए मुझे जो भी मार्केट होती है करीब, जहाँ शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। काम ऐसे भी होते हैं जिसमें, अब जैसे मैं हूँ, मैं कपड़े और जूते नहीं मंगवा सकता मार्केट से, क्योंकि मुझे कभी भी जो साइज है वो उसके इश्यूज बनते हैं, मुझे कभी भी सही नहीं आते।

नहीं है, आप अपने ऑफिस में हो चाहे घर में हो, आप कहीं भी बैठे हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और आपको वही रिसीव हो जाता है जहाँ का आपने एड्रेस दिया हुआ है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो नॉर्मली जो देखा जाए पब्लिक जो है वो अब ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा जो है वो तवज्जो देती है उस तरफ, क्योंकि ना आपको पैसे रख के जेब से जाना पड़ता है साथ, और ना आपको कुछ ऐसा जो है वो कन्विंस का इंतजार करना पड़ता है, ना आपका पेट्रोल खर्च होता है। तो आप ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर कर देते हैं और बस डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो है वो आपको पड़ जाते हैं और आपके घर तक पहुंच जाता है। अच्छा, नॉर्मली ये भी होता है कि एक ही स्टोर से अगर आप कुछ चीज़ें ज़्यादा मंगवाएं तो सेम डिलीवरी चार्जेस में आपको हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। निस्बतन आप घर से निकलें जाएं और अपना टाइम भी लगाएं, और उस दौरान आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आप बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर लेते हैं। तो लोगों की जो प्रेफरेंस है वो यही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा की जाए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान होती चली जाए। भारत जी प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ एक और गाना, उसके बाद लौट के वापस आएंगे, रहेंगे आप हमारे साथ साथ। आप सुन रहे हैं 101 ना, मुझे कहते हैं साहिल, और अब जो गाना मैं आपके लिए शामिल कर रहा हूँ वो कौन सा है? अच्छा, एक पुराना गाना है, ये बड़ा प्यारा गाना है मेहदी हसन साहब का, मुझे पर्सनली ये गाना बहुत पसंद है। तो आइए सुबह मॉर्निंग के और मजेदार कलर्स बिखेरने के लिए एक ओल्डी गोल्डी नंबर को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है।

Oh my God, what a song. तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख तुझको चैन आता है, क्या बात है. 8:29 on the dial, ladies and gentlemen. In fact, 8:30 on the dial. आप सुन रहे हैं फोन 101, मुझे कहते हैं साहिल, और लेके चलूंगा आपको फेसबुक की जाने पर. हम देख लें कि जी हमारे पास कौन कौन से मैसेजेस हैं आपके, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करना बहुत जरूरी है. जब मैं कमेंट्स पे जाता हूँ, मैं न्यूएस्ट करता हूँ, तो मुझे क्या नजर आता है, समबडी टाइपिंग, कुछ लिख भी रहा है कोई. जी हमें नजर आते हैं वहां पे सबसे पहले जन्नत अली, और कहती माय फेवरेट सॉन्ग तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है. क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. नेक्स्ट वी हैव कामिल, और कहते हैं कि सब सुनने वालों को प्यार भरी हाजिरी कबूल हो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. जन्नत कहती हैं कि जी भैया बहुत प्यारा मौसम है और आपका शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अमेजिंग शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. ताहिर अजीज यानी कि वन एंड ओनली राहत बानो मौजम कहती हैं कि डेयरेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड हैं, किसे कह रही हो, अस्सलाम वालेकुम साहिल एंड गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक. राहत बानो मौजम फ्रॉम रावलपिंडी, और कहती हैं प्लीज प्ले सॉन्ग शरीकन वग लग दी, डेडिकेट टू रिबेका अब्दुल. रिबेका अब्दुल रबाई का बेटी ने आना है 9 बजे. मनाजर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे साहिल खान, हाउ आर यू, वेलकम टू द शो, जुम्मा मुबारक फ्रॉम कतर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. बरकत रमदानी जमाली बलोचा.

FM 101. This is FM 101.

0: Hi, this is FM 101.
1: मूसलाधार बारिश और शदीद ज़ालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोहड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: This is FM 101, where your spirit is set free.
3: 101 FM.
4: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
5: This is FM 101.
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, विच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: This is FM 101.
7: सुनते रहिए FM 101. 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101।
1: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
2: सुनते रहिए एफएम 101। 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101.
1: This is FM 101.
2: जे तू लब दा वफा फिर दानी लबनी रुक जाए सजा दा सजनी जदों बना फिर

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: FM 101, Nal Nal Sade, the Nal Nal Tuade. क्यों जी ये कोई शक है क्या?
2: सुनते रहिए FM 101 101.

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: This is FM 101, where your spirit is set free.
3: 101 FM.
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
5: This is FM 101.
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
6: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
5: दिस इज FM 101.
7: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

Sí, digo.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के साथ दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए सऊदी क़यादत से मुज़ाकरात के घर से सऊदी अरब में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितन खारिज के 10 खारिज को जहन्नम रसीद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में खस्ता हाल इमारतों का फौरी सर्वे करने की हिदायत की है। और अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने स्वात में हालिया खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत की है।
1: बरसाती नालों और

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: This is FM 101, where your spirit is set free.
3: 101 FM.
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों जा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
5: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: This is FM 101.
7: सुनते रहिए FM 101.

काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

0: 101 time check. It's 2 p.m.
1: Hi, this is FM 101.
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइस तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
3: This is FM 101.
0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान

सुनते रहिए FM 101 101 101।

14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 2016। एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।

0: Big radio, big style.
1: Please,
0: FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजाहत नसीम, आपके लिए मोहब्बतों का पैगाम लाई हूँ। आप सबको जिसमें आज़ादी मुबारक हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, आप सबको खुशहाल रखे और हम सब आपस में

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले हैं फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what you mean, what you do.

0: सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा
1: सुनते रहिए FM 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने किसी भी जारहियत के खिलाफ इज्तमाही दिफाई सलाहियत मजबूत बनाने के लिए मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और बेलारूस ने तिजारत, सरमायाकारी और सनअती तआवुन मजीद मुस्तहकम करने के आज़्म का इरादा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 10 ख्वारिज हलाक कर दिए हैं। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक्वामी मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो अपनी करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल में मुआवनत करे।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजाहत नसीम, आपके लिए मोहब्बतों का पैगाम लाई हूँ। आप सबको जिसमें आज़ादी मुबारक हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, आप सबको खुशहाल रखे और हम सब आपस में

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा।

सुनते रहिए FM 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम वजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की का फरमाए। आमीन। तो मानो

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: There's music.
1: अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए, अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बरादर ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ईमान, दोस्ती और अमन व सलामती के मुश्तरका अज़्म के तहत मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान और बेलारूस ने तिजारत, सरमायाकारी और सनअती शोबों में दो तरफा तआवुन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया है। वजीर मनसूबाबंदी ने इदारों पर जोर दिया है कि वो मसनू जहानत और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में अपनी सलाहितों में तेजी से इजाफा करें। और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में जनूबी कोरिया के खिलाफ 4 बैन-उल-अक़वामी मैचेस की हॉकी सीरीज 3-1 से जीत ली है। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तीनों ब्रदर ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ईमान, दोस्ती और अमन व सलामती के मुश्तरका अज़्म के तहत मुत्तहिद हैं।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: ओके जनाब, अभी हमें एक बड़ी ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं ज़रूर उनकी तरफ भी बढ़ूंगा और आपको बताता चलूं जनाब, पाकिस्तान के पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान, थिएटर और इसके अलावा मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पे आप अपने अदाकारी करते हैं और उसके साथ साथ जनाब रेडियो आर्टिस्ट भी हैं। हमारे साथ इस वक्त उस्मान राज साहब हैं। उस्मान भाई, वेरी वार्म वेलकम टू रेडियो पाकिस्तान एफ एम 101। कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल बहुत प्यारा हूँ और आप मुझे देख सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप सच में बहुत प्यारे हैं। आज आपने अपनी ना नज़र उतारनी, इतने प्यारे आप माशाल्लाह, और आज तो ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। बीमारी में ना बंदा ना वो और प्यारा लग रहा होता है।
1: हाँ, बीमारी भी एक नेमत है अगर इसे समझा जाए तो। तो मुझे बीमार हो के ज़्यादा मज़ा आ रहा है काम करने
0: का। अदाकारी, स्टेज, टेलीविज़न और उसके साथ साथ थिएटर और रेडियो, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है?
1: गहरा सवाल। सबसे ज़्यादा मज़ा सभी में आता है क्योंकि मेरे लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं। आवाज़ भी ज़रूरी है, बॉडी लैंग्वेज भी ज़रूरी है, खूबसूरती भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें सभी मीडियम्स में अप्लाई होती हैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो फिर आप स्क्रीन पे कोई आपको कितनी देर देखेगा। अगर आपकी शख्सियत में खूबसूरती तो है, आवाज़ नहीं है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, इफेक्टिव नहीं होंगे आप। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, अच्छी आवाज़, अच्छी शख्सियत, बॉडी लैंग्वेज और फिर 100% इफेक्टिव होता है।
0: एग्जैक्टली। अच्छा, आवाज़ अच्छी होने के साथ साथ उस आवाज़ का इस्तेमाल,
1: बेशक,
0: ये आपने इसमें जो बेहतरी लेके आए वो कौन सा ऐसा मीडियम था जिसने आपको ज़रा मैच्योर किया?
1: वो तो डेफिनेटली रेडियो है।
0: रेडियो,
1: रेडियो है। मेरी मदर इंस्टीट्यूट है और अभी से नहीं, अवायल उम्री से, और बल्कि जब मैं बच्चा हुआ करता था, बच्चा तो खैर अभी भी हूँ, तब से मेरा
0: कौन सा बच्चा वगैरह, मैं बच्चा हूँ अभी। या बच्चा कुछ आता नहीं।
1: हाँ, मेरा ताल्लुक रेडियो से तब से है।
0: ठीक।
1: और यहाँ नात पढ़ने आया करते थे, ड्रामा करने आया करते थे, मिली नाम में गाया करते थे, तकारीर किया करते थे, काफ़ी चीज़ें किया करते। सो प्रोफेशनली 2012 में मैंने रेडियो को ज्वाइन किया और बहुत से प्रोग्राम्स यहाँ से कंडक्ट करता हूँ, फीचर, रेडियो ड्रामा, जो भी असनाफ हैं बोलने के हवाले से, वो सभी करने का मौका मिलता है।
0: वेरी वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं इस वक्त, ड्रामा भी, रेडियो भी और थिएटर भी। अभी सुके हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो थिएटर जिसका गवर्नमेंट भी बड़ा एम्फोसाइज कर रही है थिएटर के हवाले से, और जो ड्रामा आ रहा है उस हवाले से थोड़ा सा बताइए हमारे सुनने वालों को, ताकि वो भी उस थिएटर को देखें और वो क्या शाहकार आप लोग पेश करने जा रही हैं।
1: हाँ, मेरा चूंकि बुनियादी तौर पर ताल्लुक जो है वो अजोका थिएटर से है, और अजोका जो है वो एक इंटरनेशनल थिएटर ग्रुप है जो पूरी दुनिया में जाकर हम लोग परफॉर्म करते हैं। बहुत से क्लासिक ड्रामे, बुल्ला, मंटो और दारा, बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हो चुके हैं, हम उन पे ड्रामा बनाते हैं और मुख्तलिफ किरदार हम करते हैं। इस वक्त अलहमरा के तआवुन से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तआवुन से एक ड्रामा जो कि 8 अगस्त से शुरू हो रहा है और ये 14 अगस्त तक जाएगा।
0: ठीक है।
1: हर शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अलहमरा हॉल नंबर 1 जो है वहाँ पर ये आप देख सकते हैं। बहुत मिनिमम से इसके चार्जेस हैं, 500 रुपए की एक टिकट है।
0: ओके। मेरा ख्याल है ऑन स्पॉट मिल जाएगी।
1: जी, मिल सकती है, ऑनलाइन भी मिल सकती है टिकट वाला से। और 500 रुपए का तो आजकल बर्गर भी नहीं आता, तो अपने बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, चूंकि ये कहानी बहुत मजे की है, वसीम अब्बास साहब इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, और उनके सुपरविजन में हम ये ड्रामा कर रहे हैं, और हमारी जो हुकूमत है वो इसको फुली सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि थिएटर में एक वक्त आया था लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए थे, एक दूसरा कल्चर जो मुतारिफ हुआ। सो अब उसके साथ हमने इसको रिवाइवल का नाम दिया है।
0: वेरी नाइस।
1: और हम चाहते हैं कि वो फैमिलीज जो रूठ गई हैं वो मान जाएं और तशरीफ लाएं। हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान जो समझते हैं कि ये मीडियम क्या है और ये कितना बड़ा मीडियम है और हमारी बींग एन आर्टिस्ट कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अच्छी बात को नशर करने की। सो रेडियो ने हमें यही सिखाया, पाकिस्तान टेलीविजन में लिखे नौजवान जो समझते हैं कि ये मीडियम क्या है और ये कितना बड़ा मीडियम है और हमारी बींग एन आर्टिस्ट कितनी बड़ी जिम्मेदारी है

0: और वैसे मैं बाज साहब तो
1: हमारे इंस्टीट्यूशन है, वो तो पूरा एक
0: कैसर साहब असिस्टेंट है इसके, और बाकी पूरी टीम है हमारी अल्हम्ब्रा की जो सारे लोग इसको बना रहे हैं, इसकी मेकिंग कर रहे हैं। सो अभी मैं रिहर्सल से ही आया हूँ थोड़ी देर पहले, गो के मेरी तबीयत नासाज है आज, बुखार है मुझे, लेकिन इस काम ने हमें इतनी तकवीयत दी है और मैं चाहता था कि ये पैगाम हर सुनने वाले तक पहुंचे कि जनाब ये सब कुछ हम आप ही के लिए कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को लेकर आए, खुद आए। ये 1970 की कहानी है।
1: अच्छा,
0: और आप देखिए 2026 में बैठा हुआ एक जेन जी, एक अल्फा बच्चा, और वो चाहता है कि वो अपने दादे दादी से किस्से कहानियां तो वो सुनता है, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम जाकर जरा देखें कि वो दौर कैसा था। तो अगर सुनने वाले वो दौर देखना चाहते हैं,
1: उस दौर के अंदर चले जाएंगे,
0: जी सर,
1: उन मूवमेंट्स में चले जाएंगे, बिल्कुल हाथ में चले जाएंगे
0: सर। वहाँ वो जो बड़ा रेडियो हुआ करता था, एक बहुत बड़ा टेलीविजन हुआ करता था, ग्रामोफोन हुआ करता था, वो एक खास किस्म का एक
1: होती थी,
0: हाँ जी जी जी, और फिर नंबर मिलाने के लिए टेलीफोन हुआ करता था, वो डायल वाला, बहुत बड़ी एफर्ट्स पुट किया कर हमें करनी पड़ती थी उस वक्त। मैं तो खैर नहीं था उस दौर में, आप भी नहीं थे। सो अब हम ड्रामाई तौर पर ड्रामेटिकली लोगों को वहाँ ले जाने की एक कोशिश कर रहे हैं, और हम तो अपनी कोशिश यहीं तक कर सकते हैं।
1: नहीं सर, बहुत अच्छी कोशिश है।
0: कल उसका पहला दिन है,
1: ओके,
0: और 8 अगस्त से 14 तक उसने चलना है,
1: ठीक।
0: हर शाम
1: टाइम अपने बताया,
0: हर शाम 8 बजे,
1: ठीक, 8 बजे,
0: और लेट ना आए तो बेहतर है ताकि टिकट आपको मिल जाए।
1: और फिर उसके साथ अगर आप लेट आएंगे तो आप स्टोरी मिस कर देंगे।
0: यस बॉस,
1: उसका जो स्टार्ट है, आगाज है, कहाँ से होना है, तो वो फिर कॉन्सेप्ट जो है ना उसके आपको समझ नहीं आएंगे। वो अक्सर हमारे होता है ना, लोग लेट जा रहे होते हैं, चलो 8 बजे तो 8:30 या 9 बजे चले गए, तो वो इस खास तौर पे थिएटर की क्वालिटी ये है कि इसको आप पूरा टाइमली आप लोग देखेंगे, फिर आपको उस कॉन्सेप्ट की समझ आएगी। दैट इज़ वेरी गुड उस्मान साहब, बड़ा ज़बरदस्त है ना। डेफिनेटली हमारे जो सुनने वाले इस वक्त पाकिस्तान भर में इस वक्त सुन रहे हैं हमें, जहाँ भी सुन रहे हैं आप, लाहौर से बाहर भी आप आ सकते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। गवर्नमेंट का ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि थिएटर को दोबारा से रिवाइव किया जाए, और थिएटर जो है वो इट्सेल्फ एक बड़ा ज़बरदस्त आर्ट है, और जिस कॉन्सेप्ट को आप लोग लेके जा रहे हैं ये बड़ा यूनिक और बड़ा डिफरेंट है। एंड आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे भी बढ़े, और ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है बार बार कि आप लोग ज़रूर आएँ। और अल्हम्ब्रा हॉल नंबर 1 में,
0: मॉल रोड लाहौर। और एक नाम जो मैं इस वक्त मिस कर गया, अशरफ खान साहब।
1: अच्छा।
0: जिनको आपने 50-50 से देखना शुरू किया, अब बुलबुले में, और मतलब पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है, वो भी हमारे साथ इसमें काम कर रहे हैं। सो ये सारे वो लोग हैं जो फैमिली एंटरटेनमेंट को फ़रोग देते हैं। वसीम अब्बास साहब के बारे में खसूसी बात करना चाहूँगा, आप बिलीव कीजिए कि वो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से निपट रहे हैं, वो नबरदाजमा हो रहे हैं। सो इतनी बीमारी में भी वो हर रोज़ आते हैं हमारे साथ, रिहर्सल्स करते हैं, हमें डिक्टेट करते हैं जो चीज़ें डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझानी होती हैं, और 5-5, 6-6 घंटे हमारे साथ वो स्पेंड करते हैं।
1: अच्छा।
0: इस बीमारी में भी,
1: वेरी नाइस।
0: तो अगर एक आर्टिस्ट इतना कमिटेड है कि वो ये काम करना चाह रहा है, किसके लिए? आपके लिए। और ऑडियंस के बगैर तो आर्टिस्ट कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता।
0: और हमारी ऑडियंस हमेशा बड़ा अच्छा रिस्पांस देती है।
1: नहीं, इंशाल्लाह इस दफा भी अच्छा ही रिस्पांस आएगा,
0: और आपके सुनने वाले तो हैं भी।
1: जी जी, इसमें पूरे पाकिस्तान में आपको सुना जा रहा है, आप पाकिस्तान भर में जहाँ भी हैं आप जरूर आइए, ज्वाइन कीजिए अल्हम्ब्रा हॉल नंबर 1 में, रात पूरे 8 बजे आप तशरीफ़ ले आएँ, और इस ज़बरदस्त से थिएटर ड्रामे को लाजमी देखिए। इसका ड्यूरेशन क्या है?
0: 2 आवर्स का है ये,
1: और ये इतना एंगेजिंग होगा
0: सर,
1: आप देखें कि आपको आप उसमें आपको उठने को दिल ही नहीं करेगा
0: क्योंकि स्टोरी बहुत मजे की है, और जो आर्टिस्ट उसमें परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे बड़े नाम हैं और सारे तजुर्बेकार हैं, और बड़ी खुश दिली से वो कर रहे हैं, और डेफिनेटली कॉस्ट्यूम, उसका एटमॉस्फेयर, वो आपको उस दुनिया में ले जाएगा।
1: अच्छा।
0: 2 घंटे के लिए तो हम आपको 1970 में ले जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद अपनी गाड़ी तक कैसे पहुंचना पार्किंग
1: उसका
0: में
1: इंतजाम है आपके?
0: यस सर, इट इज अप टू यू। तो हमारा काम है 2 घंटे आपको दुनिया भुलाना और 1970 में लेकर जाना।
1: मैं आज ना शो में एक ऐसे आर्टिस्ट का भी जिक्र करने जा रहा हूँ, जब उसका कॉन्सर्ट होता था ना,
0: हाँ,
1: तो दुनिया जो है ना वो बेहोश हो जाती थी, हजारों की तादाद में। माइकल जैक्सन का जिक्र करें।

0: अच्छा,
1: सो आप भी वैसे ही कुछ करेंगे कि आप लोगों को भुला देंगे और 1970s के एरा में लोग चले जाएंगे. दैट इज वेरी ग्रेट उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच
1: फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन. और अगेन हमारे सुनने वालों के लिए भी, आप लोग ज़रूर अलहमरा हॉल नंबर 1 माल रोड पे आप तशरीफ लाएँ, इस ड्रामे को लाजमी देखिए. और बड़ी नॉमिनल सी इनके चार्जेस भी आप लोगों ने रखे हैं,
0: 500
1: इज़ नथिंग. आई थिंक आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस कॉज को, जो कि गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है. और ख़ास तौर पे इतने आर्टिस्ट, इतने बड़े बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट उसमें होंगे, उनको देखने का, उनकी एक्टिंग और वो तमाम चीज़ें जो हम बहुत मिस कर रहे थे काफ़ी अरसे से. थिएटर जो था ना वो मिसिंग था.
0: जी जी जी.
1: तो एक अच्छा है कि रिवाइवल होगा और दोबारा से ये चीज़ें अपने,
0: और लाहौर की रौनकें जो हैं वो बहाल
1: होंगी.
0: लाहौर हमेशा जिंदा दिलाने लाहौर.
1: एग्जैक्टली.
0: ये वो शहर है जिसने इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार. मैं चूँकि खुद लाहौरी हूँ तो बस यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए. आप तशरीफ लाइए, देखिए, इंजॉय कीजिए. आपकी हर शाम को हम खूबसूरत और हसीन बनाएंगे, ये वादा है आप.
1: चलें सर, थैंक यू सो मच जी. उस्मान साहब,
0: थैंक यू सो मच,
1: बहुत शुक्रिया जी. उस्मान राज साहब हमारे साथ, मारूफ एक्टर, और इसके अलावा हमारे साथ थे, आज बता रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो ड्रामा है उसके हवाले से. एक ट्रैक में से लाऊंगा, उसके बाद हम दोबारा लौट के आएंगे. हमारे एक बड़े प्यारे कॉलर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस ट्रैक के हवाले से. सो फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लवली एंड लाइवली लिसनर ऑफ रेडियो पाकिस्तान, मुझे कहते हैं फरहान खान.

0: Alright, so now welcome back to the show. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر.
0: جی کون؟
1: علی شیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سٹی سے. علی کیسے ہیں آپ؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. علی شیر آپ کیا کرتے ہو؟
1: اللہ کا شکر سر میں بھی ٹھیک ہوں سر. میں اسٹڈی کرتا ہوں لیکن ابھی تو میٹرک
0: کے ایگزام دیے. ایگزام دیے, رزلٹ بھی آ گیا ہے. پوچھ لوں انہیں رزلٹ کا کیا بنا. ویسے پوچھتے نہیں ہیں, ویسے پوچھتے. آپ نے بھی نہیں چیک کیا ابھی تک اپنا رزلٹ. میں فرحان عرض کر اچھا تو رزلٹ آ گیا, اس کا مطلب ہے. سوری کیا کہا آپ نے؟ چلے زبردست ہے. اسلام آباد کا موسم کیسا ہے؟ اچھا پیارا موسم ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ظالم ظالم. تو آپ کے دل کا موسم زیادہ اچھا ہے کہ اسلام آباد کا موسم زیادہ اچھا ہے اس وقت؟ اچھا تو اس کا مطلب اسلام آباد کا موسم اچھا ہے تو اس نے آپ کے دل کے موسم کو بھی اچھا کر دیا ہے.
1: ایسی ہے سر, ہر دل میں ایک نہ ایک سٹی بستی ہے. آپ کو پتا ہے
0: کیا بستی ہے؟ سٹی بستی ہے.
1: دل میں ایک نہ ایک شہر بستا ہے.
0: اچھا شہر بستا ہے. میں نے کہا شاید دل میں سٹی بج رہی ہے آپ کے. اچھا اچھا آپ کا اپنا شہر بجتا ہے, سٹی نہیں بجتی.
1: اپنا اتنا ہوا نا کہ میں ادھر کا ہوں تو میرا بھی ہوا, ہر ایک کا ہے جو ادھر کا رہنا.
0: اچھا بالکل ٹھیک ہے. چلو دوست تھینک یو سو مچ, خوش رہو سلامت رہو. چلے چھوڑے پورا ٹاپک کو, کیا کرنا ہے اب. آپ کے دل کا موسم اتنا اچھا ہے تو آپ اس میں انجوائے کریں. نہیں نہیں مجھے نہیں برا لگے گا, مجھے اچھا لگے گا. کیونکہ آپ کے جس کے دل کا موسم اچھا ہوتا ہے نا, اس کو ٹاپک سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, اس کو بس اپنی مستی ہوتی ہے موسم کی.
1: میری کال کرنے کا مقصد یہی تھا.
0: اچھا کیا بات ہے. اچھا اچھا اچھا اچھا چلیں زبردست جی, خوش رہیں سلامت رہیں اور انجوائے کرو اس موسم کو. اوکے جناب, اسلام آباد کا موسم پتہ چلا ہے کہ بہت اچھا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہمارے کالر تھے ان کے دل کا موسم بھی بڑا اچھا. جی السلام علیکم. السلام.
2: ایف ایم لاہور سے کال کرنی تھی لائیو.
0: جی جی ایف ایم 101 لاہور سے آپ لائیو ہیں اس وقت, آپ کو سنا جا رہا ہے پورے پاکستان میں.
2: جی آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے
0: سر. بہت شکریہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ نام بتائیں اپنا.
2: جی اللہ پاک کا شکر ہے. آپ کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے
0: سر؟ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی ہمیں پرواہ ہوتی ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا میں, کیا ہو رہا ہے لوگوں کی زندگی میں جھانکنا, کیا وجہ ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟
2: اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کاموں کے اندر جو ہے اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے, ہم اپنی زندگی کے اندر اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے, اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم اوروں کے ساتھ حسد بغض جلن اور اس طرح کی بیماریوں کے اندر جو ہے مبتلا ہیں.
0: ہمارے پاس وقت بھی بہت زیادہ ہے نا.
2: ہاں بس یہ مین چیز ہے, ہم نے اپنی مصروفیات کو کم کر دیا ہے, زندگی کو ہم نے موبائل کی وجہ سے اور کئی کاموں کی وجہ سے جو ہے ہم نے کافی زیادہ کاموں کو چھوڑ دیا ہوا ہے.
0: آپ تو نہیں دیکھتے لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے, کیا ایشو ہو رہا ہے؟
2: بس یہ تو پھر آپ سائیکالوجی کو پڑھیں یا پھر آپ کو جو ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے احوال. آپ اگر دل کے پڑھنے والے ہیں تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو پتہ.
0: چلیں آج میں آپ کا دل پڑھتا ہوں.
2: آپ پڑھیں
0: بتائیں, کیا جاننا چاہیں گے اپنے دل کے بارے میں؟
2: میں کیا, آپ کی بات سمجھ نہیں آئی.
0: آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں اپنے بارے میں؟
2: میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ मेरी मोहब्बत मुझे मिलेगी या नहीं।
0: आपकी मोहब्बत आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप ये जानना चाह रहे हैं?
2: बिल्कुल।
0: नहीं, मैं आपको दो टोक में जवाब दूं कि मैं आपको घुमा फिरा के जवाब दूं?
2: दो टोक सीधा जवाब दे दे। हुजूर,
0: आप क्या करते हैं?
2: मैं पढ़ता हूँ।
0: कौन सी क्लास में?
2: एफए के अभी पेपर दिए हैं।
0: एफए के पेपर दिए और आप मोहब्बत की तलाश में हैं कि आपको मिल जाए?
2: हाँ, इजी हो गए हूँ अब तो, आगे पढ़ना भी है, मोहब्बत की भी तलाश हो जाए।
0: नहीं, मोहब्बत की तलाश है कि मोहब्बत को पाना चाह रहे हैं, दो चीजें अलग।
2: पाना चाह रहे हैं, तलाश भी करना चाह रहे हैं, दोनों बातें।
0: अच्छा,
2: पहले तलाश है फिर पाना है।
0: अच्छा, अभी मुझे लगा कि आपको मोहब्बत मिल गई है और आप उसको पाना चाह रहे हैं, लेकिन आप अभी मोहब्बत की तलाश में हैं, है ना?
2: तलाश में भी हैं और फिर पाना भी है।
0: अच्छा, ये किसी से इंस्पिरेशन आपने लिया? किसी दोस्त को आपने देखा है वो एक शदीद मोहब्बत में है और आपने सोचा कि यार इसको मोहब्बत हो सकती है तो मुझे भी होनी चाहिए, ऐसा ही है ना?
2: इर्द गिर्द अपने दिल के अंदर पैदा होगी मोहब्बत।
0: कोई इंस्पिरेशन तो आपकी होगी ना, कोई किसी से मोटिवेट तो हुए होंगे, या फिल्में देख के या ड्रामे देख के या किसी चीज को कि यार नहीं?
2: बस कुछ किताबों को पढ़ के, नावल पढ़ के, और ये कुछ इसका असर मुझे लगता है कि है, और ड्रामास वगैरह देख के।
0: अच्छा, तो आप इस पे बिलीव करते हैं, इन बातों पे?
2: बस यही समझे आप।
0: क्या समझूं मैं?
2: इन्हीं काम चीजों की वजह से जो है बस कोई लगता है कि मोहब्बत है।
0: अच्छा, मोहब्बत है। तो मुझे ये बताओ कि आजकल यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं कि छुट्टियां?
2: अभी छुट्टियां हैं मुकम्मल, अभी ओपन यूनिवर्सिटी से जो है वो हमने आगे दाखला फिर भिजवाना है, अभी सेकंड ईयर के थे।
0: असल में ना आजकल छुट्टियां भी है ना, मसरूफियत भी कोई नहीं है, काम काज भी नहीं है, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं हो रही, तो इसीलिए जो सोचों के जो घोड़े हैं ना वो बेलगाम भाग रहे हैं, वो किसी एक सम्त नहीं है। तो जो ख्याल आ रहा है उसको आप अपने दिमाग में रख रहे हैं और उसके साथ ही जिंदा हैं आप, तो अपने ना आप पता क्या करें, अभी मोहब्बत और इन चीज़ों के बारे में कम सोचें, अपने ख्याल के ऊपर ज़्यादा काम करें कि यार मैंने अपने ख्याल को कैसे ठीक करना है। आपकी अभी उम्र नहीं है इन चीज़ों को सोचने की, इस ख्याल में जाने की, अभी उम्र है आपने अपनी ज़िंदगी को बनाना है, अपने फ्यूचर को बनाना है, अपना मुस्तकबिल बनाना है। अच्छा मुस्तकबिल बना लेंगे ना, अच्छा फ्यूचर बना लेंगे और ज़िंदगी में मुस्तहकम हो जाएंगे, हर लिहाज से बेहतर हो जाएंगे, तो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये वसवसे, ये ख्याल, ये बंदे की फरागत के ख्याल हैं, इसका प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अपने आप को पहले ना मुआशी तौर पे और समाजी तौर पे और हर लिहाज से मजबूत कीजिए। जब आप मजबूत करेंगे ना, सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करें, अपने ख्याल को मजबूत कीजिए, इन ख्यालों से निकल आएँ, ये जो तखीलाती ख्याल हैं, तसव्वुराती और ये जो जितने भी ड्रामाई ख्याल इस वक्त आ रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखो। थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
2: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह,
0: हाय हाय हाय, ये मोहब्बत का गम भी कैसा गम है। कुछ लोगों को मोहब्बत मिल जाए और उसके पाने का गम है, उसके ना मिलने का गम है। मेरे इस दोस्त को ये गम है कि अभी उसको मोहब्बत नहीं मिली, मोहब्बत की तलाश में है और वो मिलने के बाद उसको पाने का। एनीवेज जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्त, मज़ा आया वैसे आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: जी सर।
3: तारिक कृष्ण गलवा।
0: जी तारिक भाई, कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कॉल करनी नहीं थी लेकिन आपका बड़ा अच्छा, आपने ना बड़ा अच्छा उसको ना।
0: अच्छा, आपने कॉल क्यों नहीं करनी थी पहले ये बताएं मुझे।
3: मैं सुनना चाह रहा था, मेरी तबीयत सही नहीं थी।
0: अच्छा अच्छा, आपकी अभी देखें, उस्मान राज साहब मेरे पास बैठे थे, इतने बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े, उनकी तबीयत शदीद नासाज थी, लेकिन वालेकुम सलाम, आप किसको सलाम कर रहे हैं, उस्मान साहब को कि मुझे?
3: उस्मान साहब को भी आप।
0: अच्छा जी, उस्मान साहब को आपका सलाम पहुंच गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि तारिक साहब, आपने कॉल, तबीयत नहीं ठीक थी तो आपने कॉल कर दी। मैंने कहा उस्मान साहब की भी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उन्होंने फिर भी हमसे कलाम किया।
3: है।
0: मुझे लगा आपने कहीं उस बच्चे की फोन करके तो नहीं कि आपको भी ये काम तो नहीं कि यार
3: काश मुझे मेरी मोहब्बत में गाइड किया उसको। हाँ। बड़ा अच्छा गाइड किया, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ
0: सर, थैंक यू,
3: बहुत ही अच्छा लगा आपको, माशाल्लाह, बड़ा अल्लाह ताला आपको इसी तरह आईने के कामयाब करे,
0: आमीन,
3: बड़ा अच्छा लगा।
0: अच्छा उसमें तारिक भी मुझे ये बताएं कि हम ये जो हमारे रवैये हैं बाज़ार तो बहुत मामूली लगता ना, जो हमारे रिश्तों को भी दूर कर रहे हैं, दिलों में भी बदगुमानी पैदा कर रही है, माशरे में बेसुकूनी पैदा कर रहे हैं, ये वो आदात जो दूसरों की ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा झांकना, मतलब कोई बंदा आपको इजाज़त नहीं दे रहा लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी के अंदर घुसना, कोशिश करना, वाई क्यों?
3: मैं ये सोचता हूँ कि अपनी लाइफ में इंसान को इतना स्ट्रगल करनी चाहिए, अपनी लाइफ की तरफ ना मैं दूध होना चाहिए। हम इंटरफेयर करते हैं दूसरों की लाइफ में, उसने क्या किया, उसने क्या खाया, वो कहाँ चला गया, हम पीछे क्यों रह गए, तो ये सारी चीजें बेसिकली गलती हमारी अपनी है।
0: ठीक है,
3: पॉजिटिव सोच रखें, अच्छा काम करें, अपने फ्यूचर को सोचें,
0: बिल्कुल ठीक,
3: इसलिए हम सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। जब दूसरों की तरफ ही फोकस करेंगे हम तो फिर इस तरह तो उन पे भी हमारी नजर रहेगी, ये कर रहा है, ये कर रहा है, फिर लड़ाई झगड़े ये चीजें सब चल पड़ती हैं।
0: बिल्कुल ऐसे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा खूबसूरत सा कॉल है, आप कहते हैं लोगों के राज तलाश ना करो, क्योंकि जो लोगों के राज तलाश करता है अल्लाह ताला उसके अपने राज जाहिर कर देता है। ओए हो, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच तारिक भाई, जीते रहें, सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, एक कॉलर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, ओए होए, ओ ब्रेक ब्रेक, वालेकुम सर सर सर सर जनाब, सर जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी जी जी, ओए होए होए, क्या बात है, बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छा मुझे न्यूज ब्रेक की जानी बढ़ना है, उसके बाद हम लौट के आते हैं आपसे बात करना।
4: रात के 11 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए, अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ब्रदर मुबारक पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की ईमान दोस्ती और अमन व सलामती के मुश्तरका अज़्म के साथ मुत्तहिद हैं। सऊदी अरब के वज़ीर खारिजा ने कहा है कि मुश्तरका दिफा के लिए मक्का मुआहदे पर दस्तखत, पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना और तस्वीराती ताल्लुकात के इस्तेहकाम की तस्दीक करते हैं। सदर ने काबिल तजदीद तवानाई, पायदार टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान तआवुन को वसअत देने पर जोर दिया है। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में दो कार्रवाइयों के दौरान 10 खारिज हलाक कर दिए हैं।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
6: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि तुम्हारा मोहसिन।

0: लोग सदियों की खताओं पे भी खुश बसते हैं, हमको लम्हों की वफाओं ने उजाड़ा मोहसिन। जब हो गया यकीन कि वो पलट कर नहीं आएगा, गम और आंसू ने दिल का सहारा मोहसिन। वो था जब पास तो जीने को भी दिल करता था, अब तो पल भर भी नहीं होता गुजारा मोहसिन। वेलकम बैक टू द शो, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को। नादिया, थैंक यू सो मच फॉर योर पोइट्री, आपकी पोइट्री को मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा जी, ये कॉलर हमारे साथ हैं और देखते हैं क्यों कौन है हमारे साथ इस पहर में। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कौन? कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
0: जर्मनी से।
1: जी,
0: अच्छा जी। इकबाल
1: साहब, कोशिश पूरी करूँगा आपके साथ हाजिर होकर जो रोल है वो अदा कर सकती। राय साहब को मेरा मोहब्बत भरा सलाम दीजिएगा।
0: वालेकुम अस्सलाम, आपको मोहब्बत भरा सलाम पहुंचा रहे हैं उस्मान साहब।
1: 2012 या 13 में उनसे मुलाकात हुई थी कि अलहमरा सेंटर में।
0: अच्छा,
1: किताब के लिए अपना की सुनवाई थी और मोहब्बत के साथ वाकई में अपने इखलास के साथ मेरी तरह के बहुत अच्छे मुखलिस इंसान
0: है। क्या बात है
1: जी। रोल अदा यही कर सकते हैं कि हम अपने वक्त को थोड़ा सा
0: जर्मनी में आप, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान होते तो आप जरूर शामिल होते। और
1: ये तो जो भी क्रिएटिव कहीं भी हो यहाँ से यकीन करें, कोई भी मसरूफियात अगर मुझे वक्त हो ट्रांसपोर्ट और पता नहीं कहाँ का गया हूँ, सिर्फ अभी कोई भी बेहतर अच्छी क्रिएटिव हो, अपने पाकिस्तान का नाम आ रहा हो और उसकी कुछ बेहतरी हो सकती है तो जरूर पहुंचता।
0: तो आप एक काम कर सकते हैं ना, एक और काम आप कर सकते हैं ना इकबाल साहब, आपके जो इधर दोस्त अहबाब हैं लाहौर में या पाकिस्तान में, आप उनसे कहें अलहमरा हॉल में आए, ये ड्रामा देखें, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का।
1: देखिए बेटा, मैं मेरे ख्याल मेरे बच्चे की उम्र हो, मैं अब 10 साल का हो चुका हूँ
0: माशाल्लाह।
1: हमारा एक कर्ज उधार है हमारी माँ पर, तो हम उसी की बहुत कोशिश में, जब भी वहाँ गया हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी क्रिएटिव चीज हो तो उसमें करता हूँ। दोनों तीनों की किताबें मेरी अलफलामी के नाम से है, इंसानियत नामा लम्हा फिकर और फिर मंजिल मुराद। तो उसके बारे में जैसे जो मुस्लिम इंसान होते हैं वो मेरी पूरी आयानत करते हैं लाहौर में, उनके साथ बड़ी अच्छी शूटिंग रही थी। और मकसद वजह आपके साथ ये कंट्रीब्यूट करने का यही होता है कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए कुछ बेहतरी हो सके। मुमकिन जो हता है कि नजदीक है, मैं दुनिया तकरीबन घूम चुका हूँ, सिर्फ उसके अपने गयारे सिर्फ यहाँ पर आना मकसद यही था कि अमली हकैक का कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ करदार वाकत, और कुदरत ने मुझे वाकई मौका दिया।
0: जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है जी। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया, आपकी इस इन दुआओं का शुक्रिया।
1: जी जी, जो मकसद मजा ये है कि अब सूरत हाल जो है हकाइक के मुताबिक हमें वक्त के अमान होने के लिए हमें बहुत जरूरत है। आप अपनी पॉजिटिव क्रिएटिव कोशिश जारी रखें। ऑलमाइटी इज देयर, ही इज देयर, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इज्तिमाई एक कौम या अपने माशरे के तौर पर कोशिश कर रहे हैं। सभी सरकार बहुत कम है जो इस तरह से मुस्बत कोशिश कर रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक,
1: जब वो मास तौर पर बढ़ेगा, शौर उभरेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली ये क्यों करें, कोई ऐसे फिनोमेना नहीं है। कुदरत का एक निजाम जो आपने कहा ना, जो ताकत जाती है, ये जो मौजूद आपने दिया, फितरत है। बच्चे से आप बात कर रहे थे, मैं यकीन करें यहाँ पर आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मैं कई प्लेट, दो तीन प्लेटफॉर्म पीछे एक 1.5 महीने पहले मैं गया हूँ सूद अमेरिका के, बड़ी देर से सुन रहा था कि वो बहुत गरीब लोग हैं। वहां यकीन का बड़ी गुर्बत है, लेकिन सबसे प्रैक्टिकली चीज है उन्होंने इस्लाम में अपनाया हुआ। और 13 साल की उम्र का बच्चा अपनी क्लास पास करके बच्ची बच्चा कोशिश करते हैं वो कोई ना कोई खड़ा या जमीन पर उनको चादर बिछाकर अपनी चीजें बेचने की आम इजाजत होती है। ये चारों पांचों ममालिक में घुमाऊ वहां देखा है, तो इसका मतलब है कि वहां से वो अपना तिनका तिनका तिनका कोशिश मेहनत करके इस मौजू का ये फितरत है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। आप प्रोलॉन्ग करने की उसकी एडवाइस करेंगे हो ही नहीं सकता। आज मैं अपने भाई से यही कह रहा था ऐसा कि कर रहा है तो उसके इधर उधर खड़कियां शुरू हो गई
0: है।
1: फितरत है इसको आप जब नबी जब कुरान की सोच में देखे तो उन्होंने हुक्म किया है कि बलोहत पर लिखा, आप इसे डिनाई करें तो इसका मतलब है कि आप किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ हमें रिज्यू करने पर मजबूर
0: कर रहे हैं।
1: हमने कोशिश नहीं करनी है कि इसमें उनने वाकई तरीका ऐसा अपनाया हुआ है कि 12-14 साल की उम्र में वो बच्चे कोशिश शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो हमको हर चीज की अशुद्धि मुजसर है, यानी अजवाजी अशुद्धि मुजसर है, अपना काम करने की अशुद्धि मुजसर है। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमने कहा नहीं कि पहले अब सामने आपको कहा कि निकाह बलोहत पर करो, नहीं कि अब बच्चा कमाने के काबिल हो और फिर 40-50 साल की उम्र में जाकर तो निकाह के काबिल बने।
0: बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट आपका आ गया सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। वाल जनाब, जर्मनी से हमारे दोस्त से जो उस्मान साहब के लिए ख़ास तौर पे नेक तमन्नाएं दुआएं दे रहे हैं कि जी आपका जो ड्रामा है जो थिएटर ज़बरदस्त सा जो कल से मेला सजने लगा है उस हवाले से, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाल जनाब, आज मैंने जिस आर्टिस्ट को आपके सामने पेश करना है, एक बड़ा ही शानदार आर्टिस्ट जिसे हम कहते हैं ना, जिसका नाम सुनते ही जो मौसीकी और रक्स और जो शानदार परफॉर्मेंस है ना वो जहन में आती है। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं माइकल जैक्सन, जिसे दुनिया आज भी किंग ऑफ पॉप के नाम से जानती है। और माइकल जैक्सन ने सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने मौसीकी का अपना जो उसका सफ़र है उसका आगाज़ किया था। फिर वो बचपन में अपने भाइयों के साथ, बेसिकली उनके जो भाई थे जैक्सन 5 के नाम से ना उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर एक ऐसी आलमी शख्सियत बन गए कि जिसकी मिसाल जो है ना वो मौसीकी की तारीख में बहुत कम मिलती है। सो आज भी जब वो थ्रिलर या उनका जो एल्बम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लोर उस वक्त जिसके जो सेल हुआ था ना सबसे ज़्यादा, जो कि करोड़ों लोगों ने उसकी मौसीकी के जो दीवाने थे, सो उनके जो कॉन्सर्ट का जो तसव्वुर जब जब कोई करता है या देखता है, जैसे माइकल जैक्सन स्टेज पे जब आता था ना तो हज़ारों लोग चीखना शुरू कर देते थे और बहुत से जो मद्दाह थे ना उनके वो जज्बात से ऐसे मकलूब हो जाते थे कि बेहोश हो जाते थे। और ये कहा जाता था कि कुछ सिर्फ उन्हें देख कर हैरत में खड़े हो जाते थे। और कई कॉन्सर्ट में मेडिकल टीमें जो थी ना सिर्फ इसलिए मौजूद रहती थी कि अगर कोई मदा बेहोश हो गया या उसे फौरी जो तिबी इमदाद की ज़रूरत है, ऐसी सूरत में जनाब वो जो ना वहाँ पे मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत होती थी। जब वो खामोश होता था तो पूरा क्राउड जो था ना वो शाउट करता था, चीखे मारता था। जो सबसे मज़े की चीज़ वो डांस की दुनिया में जो उनकी मून वॉक है उसको जो एक मशहूर इनकलाब जो बन गया, लाखों नौजवानों ने उनकी नकल भी की और उन जैसा अंदाज भी एक बड़ा डिफरेंट सा उनका स्टाइल था। सो ज़िंदगी उनकी बड़ी शाहाना थी और उनके बारे में कि वो जो उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बड़ा ज़बरदस्त था उनका, मतलब ऐसा शानदार लाइफ स्टाइल, जो घर था जिसको नेवरलैंड रेंच के नाम से मशहूर था, खूबसूरत बागात, कितना जो उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बड़ा ज़बरदस्त था उनका, मतलब ऐसा शानदार लाइफ स्टाइल, जो घर था जिसको नेवरलैंड रेंच

0: पूछता हूँ, यही कहता हूँ यार वो तो ऊपर बैठा हुआ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भूखा उठाता तो रोया लेकिन भूखा सुलाता नहीं।
1: क्या बात है, बहुत खूब सर, जबरदस्त, कोई शक नहीं।
0: मेरी सर फरहान भाई यकीन करें, जहाँ जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही है ना, मैं सब सुनने वालों को यही कहना चाहता हूँ कि मेरा आज भी ना, आज भी मेरा दिल यही करता कि मुझे अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे तो मैं अपनी दोबारा मजदूरी करके
1: इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।
0: सर आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा अगर सुनेंगे तो।
1: नहीं अब तो आपने कह दिया तो सुना दे
0: सर। मैं सुनाना चाहूँगा, कहता है बुझे दीवे बलदे वेखे, बुझे दीवे
1: बलदे वेखे,
0: ओदी रहमत नाल लोकी पानिया उत्ते चलदे वेखे। ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ
1: ਫੁੱਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
0: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਹਾਨ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਤਰੱਕੀ ਤਾ ਫਰਮਾਈ ਯਾਰ।
1: ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। अरे जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों की कॉल्स का जो आप लोगों की शामिल हम कर रहे हैं प्रोग्राम में। एक कॉलर लेते हैं फिर उसके बाद एक ट्रैक के जाने हम बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। फुल्ला दे गुलाब विया, तेनु सांभ सांभ रख दी फिर मेरे सजना दे बाग विया।
1: क्या बात
2: सर, बहुत ही जट सर गल कर रहे हैं सर।
1: जी जी जट साहब, रावी दे कंडे तो गल कर रहे तुसीं हैं।
2: जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, ठंडिया हवावां लै रहे हैं सर, तुहाड़ा शो सुन रहे हैं, क्या बात है,
1: बड़ी गल है जी, बड़ी मेहरबानी।
2: सदा सलामत रहो सर, अल्लाह पाक तुहानूं तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे, ते भाई यार वास्ते खसूसी दुआ अल्लाह पाक इन्हां नूं तंदुरुस्ती सेहत देवे।
1: आमीन आमीन आमीन।
2: माशाल्लाह सर, थोड़ा प्रोग्राम मजदूरी ते वाकई सर करनी चाहिए, इंसान कम इंसान दे करम ने सर।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बड़ी
2: खैर होगी सर, तुहाडी जबरदस्त गल्लां ने जबरदस्त यकीन मन शख्सियत जड़ी सना अलहमरा सर, कल तो सर शुरू है।
1: जी जी, कल 8 बजे
2: इंशाल्लाह सर जावांगे जरूर, लाजमी, कल ना जा सके तो परसों चला जाएंगे।
1: जरूर जाओ जी, दोस्तों नाल जाओ, एंजॉय करोगे, मजा आएगा तनु।
2: हां सर, सानू भी तुहाडे
1: फरूकाबाद
2: तो मेरी नीला आपी नूं सलाम है, सर तुहानूं दो हत्थां नाल सर सलूट, पाकिस्तान
1: जिंदाबाद। जनाब बहुत ही जेठ साहब हमारे साथ हैं और मैं अभी एक ट्रैक सुनाऊंगा, मेरा सिग्नेचर ट्रैक है एंड आई जस्ट वांट टू डेडिकेट दिस ट्रैक टू अ वेरी गुड आर्टिस्ट फ्रंट ऑफ मी, उस्मान राज साहब इस वक्त मेरे सामने तशरीफ़ फरमाया एंड मुझे आई डोंट नो बट वाई कुछ ट्रैक जो होते हैं ना बड़े खूबसूरत होते हैं, वो आपके दिल के बड़े करीब होते हैं। तो इस स्टूडियो के बहुत से ट्रैक्स अच्छे हैं, बहुत सा मौसीकी जिसमें बड़ा आपको रिदम भी मिलता है, आपको शायरी भी मिलती है, आपको कलाम के अंदर बड़ी एक जाज़बियत, बड़ा मज़ा मिलता है। लेकिन आई डोंट नो बट जब मैं इस ट्रैक की बात करता हूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक जो मुझे लगता है। सो आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस ट्रैक टू अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी वंडरफुल पर्सनैलिटी, उस्मान राज साहब के नाम ये ट्रैक करूँगा, जावेद बशीर एंड अकबर अली की खूबसूरत सी आवाज़ फॉर स्पेशली फॉर यू।

0: ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और वक्त कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है, और आप लोगों के साथ जो मोहब्बत भरा वक्त होता है उसका तो वैसे ही नहीं पता चलता, कैसे बातों ही बातों में आप पता ही नहीं चलता ना। हाय मन अटकिया बेपरवाह देना, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा जी, ये कॉलर हमारे साथ हैं, लेट्स सी हु इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। कराची से परवीन आसिफ बोल रही हूं।
0: कराची से परवीन हमारे साथ। अरे कैसी हैं कराची वाले, कैसे हैं भाई?
1: कराची वाले तो बिल्कुल ठीक हैं, कराची भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान भाई हमारा जिंदाबाद, आपका लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सब जगह जहाँ जहाँ भी आवाज आ रही है।
0: क्या बात है, क्या बात है, पूरे पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, क्या कहेंगी आज आप परवीन?
1: बस मैं तो यही कहूँगी फरहान के, आपके प्रोग्राम का तो इंतजार रहता है, यकीन करें, इतना खूबसूरत प्रोग्राम, इतने हंसते बोलते, इतने अच्छे मूड में आप आते हैं।
0: चलिए बहुत शुक्रिया,
1: खाना खिला के भेजती हैं दोपहर का, है ना। और यहाँ जैदी साहब इतनी अच्छी चाय बना रहे
0: हैं, तो
1: खुश हो जाएंगे। आपने फरमाइश पूरी की है ना, आप जैदी साहब एक अच्छा सा चाय कप बना के देते
0: हैं, बड़ी मजे की चाय पिलाते हैं, बहुत अच्छी चाय होती है।
1: चाय बनेगी?
0: हाँ जी, नहीं तीन कप है जी, आज तो हमारे साथ एक गेस्ट भी है हमारे।
1: हाँ वही ना, स्वान साहब, उनको भी बहुत सलाम, और जो जो भी बीमार है सबके लिए मेरी दुआ है फरहान। हाँ। कि अल्लाह ताला सबको जल्द से जल्द शिफाए कामला।
0: तो अब लाहौर आ रही हैं ड्रामा देखने के लिए?
1: लाहौर कहाँ आ सकते हैं, आप टिकट भेज दें या आसमान साहब भेज दें तो मैं आ जाऊं।
0: अच्छा मैं आपको टिकट दे सकता हूँ?
1: नहीं थैंक यू वेरी मच,
0: आप आने वाले बने बस।
1: नहीं मैं तो नहीं आ सकती बिल्कुल भी।
0: अच्छा
1: अकेले नहीं निकल सकती, मुझे बहुत डर लगता है।
0: अच्छा अच्छा
1: आज ही तो मैं बैठ गई जहाज में एक दो दफा, वरना मैं जहाज में भी नहीं बैठती थी, मुझे बहुत डर लगता था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: हाँ जी। खैर तो चलें, प्रोग्राम आपका वाकई लाजवाब, दोनों सॉन्ग क्लासिकल जो आपने लगाए जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे,
0: बहुत शुक्रिया,
1: पसंद बहुत अच्छी, बहुत अच्छी हर लिहाज से। गुफ्तगू में भी माइकल जैक्सन का पूरा आपने बायोडाटा बता दिया, मैंने कहा वाह भाई, पता नहीं कोई किताब के साथ क्या है ऐसे पर बोल रहे हैं। आपका वैसे मुताला बड़ा अच्छी है फरहान।
0: चलें बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों की समाज बहुत खूबसूरत है। जी जी
1: मैं नहीं, आप करते अच्छे हैं। मैं एक आपको देखिए गजल सुना रही हूँ, बड़े मजे, आप जाके अपनी बेगम को सुनाइएगा।
0: अच्छा
1: अगर ये
0: अच्छा मैं गजल सुनूँ और वो भी अपनी बेगम को जाके, हैं ठीक है इरशाद प्लीज।
1: हाँ मैं सुना रही हूँ आपको। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा,
0: हाय हाय
1: पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा,
0: मैं तुम्हारा।
1: तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँगा लगाऊंगा बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा।
0: अरे वाह,
1: देखते आप दोनों तरह से बात मनवा
0: रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह,
1: तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना, रहा ना इनमें से कोई दुनिया में अगर एक भी तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ, वाह वाह वाह, तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ, अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा,
0: तो मैं तुम्हारा। क्या बात है, मुझे तो वो परवीन शाकिर जी याद आ गए, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी,
1: तो पिया तेरी। क्या बात है जनाब। और ये आखिरी शेर सुनिएगा कि ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किस को पाने के वसीले हैं, तमाम छोड़ो बस एक कर लो इस्तेहारा तो मैं तुम्हारा।
0: आए हाय हाय, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच परवीन आसिफ जी,
1: अल्लाह हाफिज।
0: तो मैं तुम्हारा, जैदी अगर तुम मुझे अगली दफा ऐसी ही चाय पिलाओगे तो मैं तुम्हारा। अरे जनाब वह कैसे गुजरता है पता भी नहीं चलता, और थैंक यू सो मच, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर जाते जाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जितने भी लोग पाकिस्तान भर में हमें सुन रहे हैं, लाहौर में ख़ास तौर पर हमें सुना जा रहा है, आप सब ने कल से यानी कि 8 अगस्त से रात 8 बजे एक बड़ा ही शानदार ड्रामा जो कि अल्हमरा हॉल नंबर 1 में थिएटर ड्रामा होने जा रहा है, तो आप सब ने उसमें शिरकत करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को भी लेके जाएं। और ये गवर्नमेंट का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि थिएटर को दोबारा से रिवाइव किया जाए, और जो थिएटर है, जो उसका चार्म है, जो उसका मज़ा है, जो असल थिएटर है, उसको देखा जाए। सो जितने भी लोग इस वक्त हैं, आप लोग 8 बजे कल 8 अगस्त से 14 अगस्त तक ये रात अल्हम्रा हॉल नंबर 1 में आप लोग इस ड्रामे को ज़रूर देखिएगा, इंजॉय करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और बड़ा ही ज़बरदस्त थीम है, जिसने उस्मान साहब ने हमें बताया था कि आपको 1970s का ज़माना, 1970, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं पुरानी जो यादों में पुराने वक्त को देखता हूँ, पुरानी वीडियोज़ को देखता हूँ, पुराने लोगों को देखता हूँ, पुराने स्टाइल को देखता हूँ। तो यू गाइस मस्ट वॉच दैट। सो जनाब, मैं भी चाहूँगा आपसे इजाज़त इसी अपनेपन के साथ कि आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। ज़िंदगी ने इतबा की, सांसों ने वफा की। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे। दिल्ली अल्लाह निगेबान। लव टू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।

ही गुजर जाते हैं, कुछ गीत संगीत होता है, कुछ आपकी मर्जी के मन पसंद मन चाहे गाने आपको सुनाए जाते हैं, कुछ आपके फीडबैक को प्रोग्राम कैसा बनाया जाता है फेसबुक के ऊपर, आपके कमेंट्स को प्रोग्राम कैसा बनाया जाता है, कमेंट्स आप करते हैं एफएम 101 चैनल पाकिस्तान का एक पेज आपको फेसबुक पे मिलता है, उसके नीचे एक पोस्ट लगती है, पोस्ट लग चुकी है, उसके नीचे आप कमेंट करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आज बड़ी बातें करनी है यार, तब्दीली की बातें करनी है आज, हाँ पसंद नापसंद की बातें करनी है। पसंद तब्दील होती रहती है और पसंद जो है वो वक्त के साथ साथ, हमें कुछ चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और वक्त के साथ साथ जब वक्त गुजरता है तो वही जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं वो जब हमें मिल जाती हैं तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा ये था, कैसे अब ये नहीं पसंद। उस पसंद नापसंद में वक्त जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है और वक्त का पहिया जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे पसंद और नापसंद भी तब्दील होती रहती है।

0: जी तो बता रहा था जी आपको कि वक्त का पहिया घूमता है और हमारी पसंद नापसंद तब्दील होती रहती है, और जो पसंद होती है वो शायद कि नापसंद नहीं होती लेकिन उसकी अहमियत कम हो जाती है।
1: सुन सको तो तुमको आंसू बुखारे,
0: या अगर वो पसंद हमें मिल भी जाती है तो फिर उस पसंद को हम इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं कि हम सोचते थे तब कि अगर हमें मिल गई तो हम उसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब वो पसंद मिल जाए तो उस वक्त शायद के हालात इस तरह से हो जाते हैं कि हमें कहीं और उन वसाइल को खर्च करना पड़ जाता है। जैसे कि बचपन में लगता था कि बड़े होकर बहुत पैसे होंगे और बहुत पैसे कमाएंगे तो रोज खिलौने और चॉकलेटें खरीदा करेंगे। ये वाली गाड़ी ले लेंगे, वो वाली चॉकलेट ले लेंगे, ये वाला जो स्वीट है ना ये बहुत मजेदार है, इतनी खाऊंगा ना इतनी खाऊंगा कि बस खाना नहीं खाऊंगा बस यही खाऊंगा।
2: साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने।
0: फिर जब मिल जाता है ना सब पैसे आ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं चॉकलेटें क्यों खरीदनी,
2: क्या बताएं किसे पाया,
0: ये खिलौने क्यों खरीदने हैं।
1: धीरे धीरे दिल में
0: बिजली का बिल है वो अदा कर देते हैं, रेंट सर पे चढ़ चुका है रेंट दे देते हैं। कभी अपनी कापियों और किताबों को देखकर नई किताबों को नई पेंसिलों को नए रंगों को देख के बहुत अच्छा महसूस होता था, अब किसी और के लिए कापियां किताबें खरीदना बोझ सा लगता है लेकिन खरीदनी पड़ती हैं। फिर बचपन में अम्मा जब कान से पकड़ के सुलाने की कोशिश करती थी दोपहर के 2 बजे तो बहुत मुश्किल लगता था, सोना बहुत मुश्किल लगता था, और अम्मा उल्टे उल्टे डाल के थपका थपका के सुलाती थी। नींद नहीं आती थी लेकिन कैसे कहते कि अम्मा नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी सोना पड़ता था। और अब अगर कोई बोल देना जाओ 2 घंटे के लिए सो जाओ तो लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है, सबसे बड़ा इनाम मिल गया है, 2 घंटे सोने को मिल जाएंगे। कभी वो सोना जो हमें अच्छा नहीं लगा करता था आज वो सोना बहुत अच्छा लगता है। तो खैर पसंद ना पसंद तब्दील होती रहती है और पसंद किस तरह से तब्दील होती है वो वक्त उसका तायुन करता है कि किस तरह से उसका हालात उसके तायुन करता है, उसके इर्द गिर्द का माहौल इस बात का तायुन करता है कि हमारी पसंद क्या है नापसंद क्या है, कपड़े कौन से पसंद हुआ करते थे अब नहीं होते, वो रंग जो हमें पसंद हुआ करते थे शायद अब नहीं होते। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले वक्तों के अंदर शौक चीज़ों को पसंद किया जाता था, ज़्यादा रंगीन चीज़ों को पसंद किया जाता था, लेकिन आजकल एलिगेंस उसको कहा जाता है जहां बेरंगी हो। अगर आप घर देखें तो पहले ज़माने में लोग जो है वो रंगीन घर बनाया करते थे, रंगीन कलर्स को पसंद करते थे, अपने कमरों के रंग जो है वो नीले किया करते थे, लेकिन अब जितना डल कलर होता है उसको ज़्यादा एलिगेंट समझा जाता है, जितना डल फर्नीचर होगा उतना उसको एलिगेंट समझा जाएगा, बस हल्का वाइट या हम उसे कहें मिल्की वाइट या ऑफ वाइट इस तरह के कलर जो है वो पसंद किए जाते हैं घरों के अंदर फर्नीचर्स के अंदर। अगर आप कपड़ों की भी बात करें तो कपड़ों के अंदर भी हल्के रंग पसंद किए जाते हैं, ख़वातीन भी अब हल्के रंग इस्तेमाल करती हैं, हल्के रंग पसंद किए जाते हैं। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं ये इंसान के अंदर अजल से हैं और अब तक रहेंगी, शायद कि आज जो है वो हमें हल्के रंग नज़र आ रहे हैं और हमें हल्के रंग पसंद होते हैं, शायद एक आध सदी के बाद 50-60 सालों के बाद फिर से शौक का वक्त आ जाए। तो वक्त फिर से आ ही जाता है।

तो आज आपसे यही पूछ लेते हैं जी कि आपको क्या पसंद था जो अब पसंद नहीं है, कभी आपको बहुत ज्यादा पसंद था और अब पसंद नहीं है, और अब आपके पास है और अब आपको वो शायद पसंद है जो पहले पसंद नहीं था। कुछ भी आप बताना चाहें तो मुझे बता सकते हैं। आज जी के भी मुझे कहते हैं वक्त हुआ चाहता है, 12:11, 8 अगस्त है, 2026 है और गाना बहुत खूबसूरत है, सुनाते हैं आपको। सुनिए, वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। 0511111001 इज द डायलिंग नंबर।

हाँ जी जनाब, वेलकम बैक बन सकीन, एक दफा फिर खुश आमदीद मनोवा इंटरनेशनल में। आरजी केबी मुझे कहते हैं और 12:19 है, 8 अगस्त है, अगस्त का महीना जो है वो चल रहा है, 14 अगस्त को जो है वो बहुत कम दिन बाकी रह चुके हैं और बिल्कुल हर तरफ हमें झंडियां दिख रही हैं, हर तरफ हमें रंगीन जो है वो ग्रीन ग्रीन सभी कुछ दिख रहा है, हर तरफ रोशनियां भी होना शुरू हो चुकी हैं। 10 तारीख के बाद जो है वो इस्लामाबाद बिल्कुल ग्रीन कलर की लाइट्स के साथ नहा जाता है, वाइट और ग्रीन कलर की तमाम लाइटें जो है वो बिल्डिंग्स के ऊपर लगाई जाती हैं। वैसे पहले नहीं होता था लेकिन लास्ट 3 to 4 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंगों को सजाया जाता है। तो जब 14 अगस्त हुआ करती थी बचपन के अंदर तो तब भी हमें बहुत अच्छा लगा करता था, हर तरफ ग्रीन ग्रीन और ग्रीन हम कपड़े बनाया करते थे, बैजेस जो है वो पहली अगस्त से जो है वो बैजेस हम लगाया करते थे स्कूल के अंदर और कोशिश होती थी कि सबसे खूबसूरत बैज मेरा होना चाहिए, सबसे प्यारा बैज मेरा होना चाहिए। और इस दौड़ के अंदर कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते थे जिनकी छाती के ऊपर बैजेस ही बैजेस हुआ करते थे, इतने बैज लगाए जाते थे कि बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या कोई एयर मार्शल है जिनकी छाती के ऊपर बैजेस ही बैजेस हैं। अजीब रंग बिरंगी बहुत खूबसूरत बैजेस जो है वो बनाए जाते थे, दुकानदारों की खूब बिक्री होती थी, झंडियां लगाई जाती थी। हमें याद पड़ता है कि 10 तारीख के बाद हम स्कूल को खूब सजाते थे, झंडियां जोड़ के लगाते थे, अपनी अपनी क्लास को खूबसूरत बनाते थे, चार्ट्स लगाए जाते थे। अब कुछ वो भी तब्दील हो चुका है, अब मैं देख रहा हूँ कि लोग फेस पेंटिंग्स कराते हैं, बच्चों के चेहरों के ऊपर पाकिस्तानी झंडे बनाए जाते हैं और ये होना चाहिए। आपका मुल्क के साथ मोहब्बत और जो एक दिन आप मनाते हैं साल में उसके अंदर आपको मिली नगमे वो बहुत सुनने को मिलते हैं और उन मिली नगमों की धुनें अगर अभी भी आज कहीं कोई बच जाए ना तो बचपन याद आ जाता है, वो स्कूल के अंदर जो टैबलोज किए जाते थे वो याद आ जाते हैं, वो उन टैबलोज को तैयार करने के दौरान जो तैयारियाँ होती थी उनका बड़ा मज़ा आता था, वो बहुत याद आती हैं कि क्लास बंक करके और वो जो 14-15 दिन जो है वो हम तैयारियां किया करते थे उनका बहुत मजा आता था, बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो बैठ के वो गपशप करना और अपने दूसरे क्लास फेलोज के साथ, दूसरे क्लासमेट्स के साथ, स्कूल फेलोज के साथ बैठ के बातें करना, टीचर्स के फेवरेट होना, जो जो स्टेज के ऊपर फेवरेट हुआ करता था और जो स्टेज के ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंट होता था वो टीचर्स का फेवरेट होता था और उसको जो है वो तवज्जो भी मिलती थी, खासकर इन 2-3 महीनों के अंदर तो बहुत तवज्जो मिलती थी, 14 अगस्त के बाद भी तवज्जो मिलती थी और 14 से पहले भी बहुत तवज्जो मिलती थी उन स्टूडेंट्स को जो स्टेज की शान हुआ करते थे।

0: जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माए घटाए, मैं खान निगाहों अदाओं के तराने।
1: अच्छा ये गाना जी अभी एक ब्रेक के अंदर कॉल आई है एक प्यारे भाई की, उन्होंने फरमाइश की है, दैट्स व्हाई मैंने प्ले किया।
0: ऐसी ही एक रात थी,
1: एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था।

बहुत खूबसूरत गजल है, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, पहली ही नजर में ये दिल मिसार हुआ था। खबर ना थी कि मोहब्बत भी एक अजाब बनेगी, जिसको चाहा वही दिल का करार हुआ था।

उसकी आंखों में अजीब सा नशा था ऐसा, दिल मेरा पहली बार इतना बेइख्तियार हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सा नशा था ऐसा, दिल मेरा पहली बार इतना बेइख्तियार हुआ था।

0: हर एक अदा पर उसके दिल फिदा होने लगा, हर एक अदा पर उसके दिल फिदा होने लगा, मुझे क्या पता था कि मैं शिकार हुआ था। वो कच्ची उम्र का प्यार था,
1: जब आया कुछ रो
0: उसका यूं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना,
1: कुछ रो
0: हल्की सी मुस्कुराहट से पीछे मुड़कर देखना,
1: जब आया उस हुस्न की देन भी नजरों को फिराया,
0: दिल ऐसे घबराया।

कि दिल ऐसे घबराया कि मालूम न हुआ मुझे कि हाय मुझे प्यार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, पहली ही नजर में ये दिल निसार हुआ था।

हाँ जी जनाब, तो मैं बात कर रहा था जी कि तब्दीलियां और पसंद नापसंद और पसंद कुछ होती थी और बदल जाती थी। ऐसे ही पहले हमें दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था, खेलों के मैदानों में घूमना बहुत अच्छा लगता था, दोस्तों के साथ सारा दिन क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, छुपन छुपाई खेलना, बहुत सारे और गेम्स ऐसी होती थी जिनको खेल के बहुत अच्छा लगता था। अब अगर कोई प्लान करता है ना, कोई बिजनेस प्लान होता है कि यार चलो चलेंगे, कोई आउटिंग करेंगे, उस आउटिंग के दौरान हमारे दिमागों में ज़रूर होता है कि यार फ़ायदा क्या होगा, इससे बिजनेस क्या आना है, इससे जॉब कैसे सिक्योर होनी है, बॉस के साथ जाते हैं यार, उनके साथ घूमेंगे, जरा सी मिंगलिंग हो जाएगी, थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और बस फिर हम तंग नहीं होंगे, नौकरी अच्छे से गुजरेगी, कारोबारी यार कोई बात नहीं है, कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। दिल में घूमना फिरना नहीं होता, बस मतलब होता है, केवल मतलब हल हो जाए। और अगर बस वो मतलब निकल जाए ना और उसके बाद वो प्लान हो ना, तो फिर अगर वो प्लान कैंसिल हो जाए तो फिर हमें बड़ी खुशी मिलती है, हम कहते हैं यार चंगा है, बस प्लान कैंसिल हो गया, शुक्र है, घर रहने का मौका मिल जाएगा। खासकर मेरी जिंदगी में तो ऐसा बहुत है, क्योंकि मेरी जिंदगी में इवेंट्स बहुत हैं और जब कभी कोई इवेंट कैंसिल हो जाता है ना, तो बहुत सारे लोगों को शायद बुरा लगता हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो यार ये बात हुई ना, बस दैट्स ग्रेट कि अब जो है वो इवेंट नहीं करना पड़ेगा, रात को जागना नहीं पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा एक और मजे की बात कि अक्सर जो है वो लोगों को या बहुत सारे लोगों को ये बाहर के खाने का बड़ा चस्का होता है कि बाहर का खाना खाना है, बाहर जाके आउटिंग करनी है। लिटरली आप यकीन जानिए कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर मुझे घर खाने का मौका मिल जाए, चाहे बाहर जो भी बना हो, जितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, अगर मैं मुझे अगर मौका मिल जाए ना कि मैं घर जाके खा सकूं, तो मैं बाहर का खाना ना बिल्कुल अवॉइड कर देता हूं। इसलिए नहीं कि शायद सेहत की वजह से, इसलिए कि मुझे घर का खाना पसंद है। और एक वक्त हुआ करता था कि पड़ोस से अगर कोई सालन आ जाए ना, तो अम्मा से लड़के कहा करते थे, मैंने ये वाला घर वाला नहीं खाना। नबीला आंटी के घर से जो खाना आया ना, वो खाना है। तो अम्मा कहा करती थी, हाँ कार दी मुर्गी दाल बराबर। घर जितना भी अच्छा बना हुआ करता था, बाहर से अगर कोई भिंडी भी आ जाती ना, तो उसमें भी इतना स्वाद होता था कि हम कहते थे बस ये खाना है।

0: तब अच्छा लगता था कि बड़े ओके हम जो है वो जब आसानी हो जाएगी हमारे लिए, जब हमें रोक टोक नहीं होगी तो हम खूब खेलेंगे, खूब फुटबॉल खेलेंगे, खूब क्रिकेट खेलेंगे। काश वो दिन कब आएगा कि जब हम आज़ादी से क्रिकेट खेल सकें या आज़ादी से फुटबॉल खेल सकें या कोई भी गेम खेल सकें। अब अगर वक्त मिल जाए ना तो हम कहते हैं यार आधा घंटा घंटा पहले घर चले जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे, थोड़ा गार्डन में बैठ जाएंगे, परिंदों से खेल लेंगे, अपने किसी पेट के साथ खेल लेंगे, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेल लेंगे। अब गेमें खेलना अच्छी नहीं लगती, अब गेमें खेलनी पड़ती हैं। सारा दिन बाहर गेमें खेल खेल के ना घर जाके सुकून करना अच्छा लगता है। अच्छा एक और मजे की चीज़ कि अगर हम अक्सर घर से जब बाहर निकला करते थे, कहीं शादी पे जाते या किसी दावत पे जाते, किसी दोस्त के साथ जाते या कहीं जाना होता था तो खूब फैशन को सोचा करते थे कि कौन सी ज़बरदस्ती शर्ट पहने, कौन सी ऐसी पैंट पहने कि इससे हम सबसे ज़्यादा फैशनेबल दिखाई दें, कौन सी ऐसी कट कराएँ, किस तरह से जो है वो अपने बालों को बनाएँ, किस तरह से कौन सा फैशन ऐसा करें कि जिससे पता चले कि यार ये डिफरेंट है। और अब कभी दोस्तों के साथ बैठना हो ना तो लगता है कि यार अच्छा मैं ना वो वाला ट्राउजर पहन के जाऊंगा, यार कंफर्टेबल होके बैठना है यार, जरा वैसे खुली सी शर्ट दे दो मुझे, आज मैंने वो वाली पहन के जानी है, जॉगर्स नहीं यार, जूते नहीं नहीं नहीं, नहीं आज यार बस स्नीकर्स में तो जाते ही रहते हैं, चलो आज चप्पलों में चले जाते हैं। उसने कौन सा मुझे जज करना, उसे पता है मैं कौन हूँ, चप्पल उतार के ना आलती पालती मार के ऊपर सोफे पे होके बैठेंगे। तो वो जो चीजें जो पहले पसंद नहीं थी अब पसंद है, और जो पसंद थी वो अब पसंद नहीं है। अच्छा एक और मजे की बात हुआ करती थी कि अगर अक्सर हमें बुखार हो जाता है या हम बीमार हो जाया करते थे तो अम्मा हमें बड़े मजे मजे के खाने बना के दिया करती थी, और अक्सर हमें कहा करती थी कि अच्छा ये बीमार है ना इसको ये दे दो, जो घर में सबसे अच्छी चीज बनी होती थी वो बीमार बच्चे को मिला करती थी, अरे वो खिलौना है तो वो बीमार बच्चे को यार इसको दे दो, बीमार है ना इसका ख्याल रखो। और अब मेडिसिन भी खुद उठ के लेनी पड़ती है, और बीमार हो जाए तो फिर ये परेशानी होती है यार काम कैसे होगा, ये चीज़ बिगड़ जाएगी, वो चीज़ बिगड़ जाएगी, इस तरह से हो जाना है, उस तरह से हो जाना है। सो पहले जो चीज़ें पसंद थी अब नहीं है भाई, वक्त बदलता रहता है, जो अगर आपको चीज़ें अब पसंद है ना तो उनके साथ दिल मत लगाइए, वक्त बदलेगा, कुछ दिन गुजरेंगे वो चीज़ें आपको शायद कि उस तरह से अच्छी ना लगने लगें। तो इसलिए अगर आपको अब बहुत जुनून से कोई चीज़ पसंद है ना तो उसने भी कुछ देर तक रहना है, कुछ देर के बाद उसने भी फेड हो जाना है।
1: अजनबी मुझे तुम याद आते हो।
0: अच्छा वैसे गाना बड़ा जबरदस्त है और उसने में वो सही कह रहा है कि अजनबी तुम मुझे याद आते हो, तो अजनबी जो भी चीज़ होती है ना वो हमें पसंद होती है, लेकिन जब वो फेमिलियर होना शुरू हो जाती है तो फिर उसकी पसंदीदगी कम होना शुरू हो जाती है। मुझे कहते हैं आज के पी जी 12:33 हैं, और होपफुली मैंने इतनी बातें आपके साथ कर ली हैं कि आपको जब आज का टॉपिक समझ आ गया होगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो अगर आप मुझे दोबारा बताएंगे कॉल के ऊपर तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर आप कुछ अलग बताएंगे, कुछ डिफरेंट बताएंगे तो तब मुझे अच्छा लगेगा, है ना, कुछ ऐड ऑन करें ना यार, जो चीज़ें मैंने बता दी है ना उन्हीं को आपने कहना है कि हाँ खुरम भाई आपने वो बताया था ना यार बिल्कुल ऐसा ही होता था, मैं ऐसा ही था, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये मेरे लिए फेमिलियर हो चुका है ना, सब सुनने वालों के लिए भी फेमिलियर हो चुका है। अगर आके आपने कुछ इस हवाले से बात करनी है, इस मौजू के हवाले से, तो आपके पास नई चीज होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए ना, वरना फिर आपने कहना अगर आपके पास नहीं है ना तो आपने कहना यार आज मौजू पे बात नहीं करते हो भाई, आज मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, ये बात करते हैं, ठीक है, तो उसकी भी आपको इजाजत देते हैं, ठीक है। वरना फिर ना मैंने आपके लिए ये वाला गाना चला देना है, ये वाला।

ओके जी, मेरे साथ मौजूद हैं, कौन है? नजीर खुसो है मेरे साथ सोबतपुर बलोचिस्तान से, प्रोग्राम सुन रहे हैं और बात कुछ लिख रहे हैं। कहते हैं लोग अपने मूड के हिसाब से अहमियत देते हैं, जब उनका मूड अच्छा हो तो आपका हम भी अहम होता है, जब उनका मूड ना हो तो आपका पैराग्राफ भी बेमकसद हो जाता है। यस यस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम जो लिखते हैं ना HMMMMM, उसकी बात कर रहे हैं नज़ीर खुसो मेरे साथ जी। अच्छा, जिम्मी मेरे साथ हैं जी, सलाम कह रहे हैं, और साइम तबस्सुम मेरे साथ हैं जी और कह रहे हैं अल्लाह आपसे राज़ी हो। यकीन करो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा अंदाज़ है, खुश रहो हमेशा, कोई दुख ना देखो। थैंक यू सो मच साइम, बहुत अच्छी दुआ दी है आपने। जुबैर है मेरे साथ सियालकोट से, कहते हैं जी कौन कौन है सियालकोट से? तो सियालकोट से मैं नहीं हूँ, जन्नत सलीम है सियालकोट से जी मेरे साथ और सलाम कह रही हैं जी। वालेकुम सलाम। फजल काकड़ मेरे साथ हैं जी और कोयटा।

फराफजल लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम की भी ब्यूटीफुल बिगनिंग, लिसनिंग यू फर्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑफ कोर्स चॉइसेस बदलती हैं टाइम और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, और दुरुस्त फरमाया आपने, थैंक यू फरा। चौधरी मीना गुज्जर मेरे साथ है जी, सलाम कह रही हैं और कहती हैं वेलकम टू द प्रोग्राम, क्या हाल है आपके? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीना, कहाँ से आमद हुई है आपकी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम? प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग चाहिए मीना। अली अब्बासी मेरे साथ है जी, सलाम कह रहे हैं, कहते हैं आई लाइक योर शो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच अली अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। कोमल ईमान मेरे साथ यूएसए से हैं जी, सलाम कह रही हैं, कहते हैं हाउ आर यू, आई एम गुड कोमल, लिखते हैं यू आर द बेस्ट एवर, थैंक यू सो मच कोमल।

0: समित कुमार कहते हैं जी कि केवी भाई आपका प्रोग्राम मैंने फीफा वर्ल्ड कप में सुना था और आपने बहुत अच्छा जो है वो तस्करा किया था फीफा वर्ल्ड कप का, और आपने उसके ऊपर काफ़ी अच्छी बात की कि अनी भाई को भी बहुत अच्छा मालूम था फुटबॉल का, लेकिन आपने जो जिशान नासिर भाई को जो है वो बिठाया था साथ, वो आपने अच्छा नहीं किया था क्योंकि आपने सिर्फ खाना पूरी की थी, क्योंकि जिशान भाई को और बहुत कुछ पता है ना सुमित, सारी बातें नहीं पता होती ना, अब मुझे सिर्फ फुटबॉल का पता है ना, जिशान को और बहुत कुछ पता है, तो हम उससे वो सीख रहे थे, वो हमसे फुटबॉल सीख रहा था। तो जिशान जब प्रोग्राम में बैठते हैं ना तो वैसे ही बस मजा आता है, खाना पूरी बिल्कुल नहीं थी। जिशान की हमेशा जरूरत रहती है, जब भी वो प्रोग्राम में आता है ना बड़ा मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है। क्योंकि उससे वो बातें सुनने को मिलती हैं जो हम कहते हैं हैं जिशान, या जिशान अल्लाह का नाम है यार, जिशान क्या क्या कह रहे हो जिशान, फिर हम जिशान से सीखते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, प्रैक्टिकली नहीं उसको आजमाते, लेकिन जिशान से सीखते जरूर हैं। माजबी कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम के भी, वालेकुम अस्सलाम माजबी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे साथ जी कोई और भी है, कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम, इतना क्यों आपकी उंगलियां तस बजा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहतरम, कैसे हैं आप? आज बिल्कुल, आज आप फर्स्ट कॉलर हैं।
1: तो आपने दावत दी और मैं इंशाल्लाह आपके पास पहुंच गया।
0: जी जी।
1: और आज जो ने आपने सॉन्ग जो लगाए हैं इनकी सिलेक्शन की बहुत जबरदस्त।
0: अच्छा, आज गाने अच्छे हैं।
1: मैं कहता हूँ कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ।
0: वो जो हुस्न की देवी वाला था ना, वो किसी की फरमाइश थी।
1: नदी असल साहब से।
0: जी जी जी, मेरी एहसन साहब थे।
1: क्या बात है जी, उसकी भी जवानी की सॉन्ग बहुत पुराना सॉन्ग था। क्या बात
0: जी, वो किसी की फरमाइश थी, मैंने कहा चलो आज पहली फरमाइश भी पूरी करते
1: हैं। जितने भी दरअसल चार अभी अताउल्लाह साहब आपने चलाया था, ये भी जबरदस्त था आपके गाँव, इसका वक्त था, इसमें भी बहुत रोहित था इस गाने।
0: अच्छा चले जी, बताए, गानों की तारीफ तो हो गई सर, क्या कहने आए हैं मुझे आप?
1: मैं कहने आया हूँ, मैं थोड़ी सी आपसे इजाजत चाहूंगा, अनिला साहब भी आएंगी
0: जी,
1: बहुत सारे जो आए, तो मैं अनिला साहब से ये पूछता हूँ, साहबा से पूछता हूँ, मिशाल साहबा की कॉल नहीं आई काफी दिनों से बने।
0: मिशाल साहब की? हाँ, वाकई मिशाल गायब है कहीं।
1: हाँ तो वो कहाँ है, शायद कहीं बाहर तो नहीं टेबल कर गई?
0: मैं उनसे, वैसे तो मैं अब सबके जो है वो आते पते रखता हूँ, क्योंकि मैं नादरा में होता हूँ ना, तो सबके पते आते रखता हूँ, मिशाल मेरे से जरा मिस हो गई।
1: नादरा साहब एक और हमारी कनेक्ट बहुत अच्छी थी।
0: अच्छा, और कौन?
1: नादरा साहब।
0: अच्छा, नादरा
1: जरूर पता होगा क्योंकि वो रेगुलर कॉल लाहौर के थे।
0: अच्छा,
1: वन पे कॉल करती थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चले जी, नादरा को भी अल्लाह ताला से
1: कभी आ जाते थे। तो दूसरी बात, आप कह रहे थे कि पसंद या नापसंद, शुक्रम साहब जब कुछ चीज इंसान सालों साल किसी चीज के पीछे दौड़ता है ना, उस टाइम उसको कदर होती है, जब वो हासिल कर लेता है उसकी मोहब्बत, उसकी अहमियत वो दिल से निकल जाती है।
0: जब इंसान सैर हो जाता है,
1: इंसान इंसान ना शुक्र है, उससे रब्बे का नाज का शुक्र अदा नहीं करता कि जो मुझे मिल गया है रब की तरफ से, मेरे ऊपर एक इनाम था, मैं इसकी कदर करूं, फिर इंसान दूसरी किसी के चीज के पीछे भागेगा, तीसरी चीज के पीछे वो पसंद अपनी वो अपनाएगा कि मैं तीसरी चीज हासिल करूं। इसी तरीके से इंसान जो ना शुक्र है वो कई चीजों के पीछे भागेगा।
0: अच्छा, आपका नाम नाम नहीं बताया आपने सर?
1: साजिदार हूँ।
0: साजिद बात कर रहे हैं?
1: हाँ, मैं आज से दो हफ्ते पहले मेरी आपसे बात हुई थी।
0: अच्छा,
1: पिछले जुम्मे तो मैं नहीं हाजिर हो सका, तो इस दफा मैंने सोचा कि खुर्रम बेग साहब।
0: अच्छा साजिद साहब,
1: आप भी लाहौर से बिलोंग करते हैं तो मैं भी लाहौर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा साजिद साहब, मैं लाहौर से नहीं, मैं इस्लामाबाद से हूँ। खैर साजिद साहब, मैं आपकी इस बात के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा, जो अभी आपने कहा ना कि इंसान ना शुक्रा है और वो शुक्र अदा नहीं करता और एक से दूसरी चीज की जानिब अपना सफर जो है वो जारी रखता है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। वैसे इंसान को कभी ना ना शुक्रा भी होना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात की है ना, मैंने सबको बहुत अजीब लगा होगा।
1: अल्लाह ताला का शुक्रगुजार,
0: अल्लाह का जरूर होना चाहिए, बेशक बेशक
1: उस मिल गया है, मैं इस पे शुक्र रब का अदा करूं।
0: नहीं, शुक्र तो रब की, साजी साहब सुन लेना, रब का शुक्र अदा करना तो एक आपका फरीजा है ना, एन फरीजा है कि रब अगर आपको तकलीफ भी देता है ना तो उसके ऊपर भी शुक्र अदा करें कि तकलीफ भी उसने अगर आपको दी है तो उसने कुछ उसके अंदर बेहतर समझा है तो तब आपको तकलीफ दी है। लेकिन जो जो ना शुक्री है ना, साजी साहब ऐसे बात नहीं हो पाएगी ना, फिर
1: काट रहा हूँ वो हमारे गुनाह की कफारे होते हैं।
0: चले आपकी कॉल के बाद मैं इस पर बात करता हूँ, ठीक है? ओके जी। अच्छा जी, साजिद साहब कह रहे थे कि नाशुक्र है इंसान और रब का शुक्र तो हमें अदा करना चाहिए, चाहे हम तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं। उस मुसीबत और मुश्किल के अंदर भी यकीन जानिए ऐसे ऐसे राज पिन्हा होते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक सिर्फ चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आपको तकलीफ ना हो तो आपको कभी ये मालूम ही ना पड़ सके कि सुकून क्या होता है। अगर आपको दर्द ना हो ना तो आपको कभी सेहत की अहमियत का एहसास ही ना हो सके कि आप कि सेहत क्या चीज है। अगर आपको प्यास ना हो ना तो आपको पानी की कद्र अहमियत और मंजिलत कभी उसका उसमें महसूस ही ना कर सके, उसकी मिठास को, उसके जायके को, उसके चाशनी को आप कभी महसूस ना कर सके। अगर आपने कड़वा कभी ना खाया हो ना तो मीठा कभी आपको मालूम ना हो सकता। तो इसलिए तकलीफ में भी रब का शुक्र अदा किया करें। जो लोग मेहनत करके बहुत स्ट्रगल करके जिंदगी में कुछ हासिल करते हैं ना, उसका मजा या उसकी चाशनी ना उन्हीं को नसीब होती है। चलें इस बात पे मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक साहब के पास बैठा था और उन साहब को रब ताला ने बहुत बहुत कुछ अता किया। मैं अगर कहूँ कि दुनिया की कोई नेमत अगर हो तो शायद की कोई बात हो कि उनके पास शायद वो नेमत ना हो, दौलत के एतबार से अगर बात करें, या आप इस दुनियावी एतबार से अगर बात करें कि उनके पास ज़र्रो दौलत या गाड़ियाँ, पैसा, जहाज, क्या उनके पास नहीं है। हर मुल्क के अंदर, हर शहर के अंदर उनका आना जाना, हर शहर के अंदर उनका अपना घर, दसों के हिसाब से, बीसियों के हिसाब से नौकर, हर शहर के अंदर गाड़ियाँ, सब कुछ अल्लाह ने अता कर रखा उनको। एक दफ़ा एक महफिल में बैठा था और मैं भी उस महफिल में बैठा था और उनके एक दोस्त उनके साथ बैठे थे और थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और उनकी बेटी अंदर आई। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा मैंने ना तुम्हारे लिए नई गाड़ी खरीदी है। तुमने फला अंकल, उन्होंने एक साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा उन अंकल के पास उसकी चाबी है और जाओ वो गाड़ी मैंने तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, वो तुम ले लो। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त उस खातून जो वो बच्ची थी, आई थिंक सो वो कोई 21-22 साल की खातून थी, उनका क्या रिएक्शन हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे उनका रिएक्शन ये हुआ होगा कि वाह बाबा थैंक यू सो मच, यू आर माय लव, यू डैड, यू आर माय लव। भाग के आई होंगी, अपने बाप को सीने से लगाया होगा, उनके माथे को चूमा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने कहा बाबा आपने क्यों मेरे लिए गाड़ी ली है, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी मौजूद है, मेरे पास यहाँ इस्लामाबाद में गाड़ी मौजूद है, लाहौर में गाड़ी मौजूद है, कराची में गाड़ी मौजूद है, हर शहर में मेरे पास अपनी अलग गाड़ी है, स्क्वाड है, सब कुछ है, आपने क्यों खरीदी है मेरे लिए गाड़ी। मैंने कहा बस बेटा मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने कहा चलो तुम्हें बर्थडे का गिफ्ट देना चाहिए तो आप ले लो वो गाड़ी। बच्ची ने फिर इसरार किया, उसने कहा कि मैंने बाबा वो गाड़ी नहीं लेनी, ऑलरेडी मेरे पास गाड़ी मौजूद है, मैं अपनी गाड़ी पे बहुत कंफर्टेबल हूँ, बस मुझे यही चाहिए। आपने फिर इसरार किया कि बेटा ले लो गाड़ी, बेटी ने फिर इनकार किया, फिर बाप ने गुस्से से कहा कि बेटा मैंने ले ली है तुम मेरे गिफ्ट को ठुकरा रही हो। एंड कैन यू बिलीव कि मैंने उस बच्ची की आंखों में आंसू देखे, लाचारगी के आंसू देखे, कि वो नहीं लेना चाहती थी और जबरदस्ती इसको कोई चीज थमा दी गई। तो जब वो बच्ची उस रूम से बाहर निकली उन साहब ने अपने जो सात दोस्त बैठे थे, मैं उनके उस दोस्त के साथ उनसे मिलने गया हुआ था, उनसे कहा कि उनका नाम लिया, उनसे कहा कि जो भी उनका नाम था, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि देखो यार ये ना बच्चों को, आजकल के बच्चों को कोई चीज फैसिनेट ही नहीं करती, इतनी महंगी गाड़ी मैंने इसके लिए खरीदी है और इसकी हालत देखो, ये गाड़ी लेना नहीं चाह रही। साथ ही कहा कि देखो उनका एक नाम था, मैं चलो उनका नाम तो नहीं लेता लेकिन एक फर्जी नाम रख देता हूँ बिलाल, कि देखो बिलाल हमें ना उस वक्त मोटरसाइकिल भी जब हम बच्चे होते थे ना तो बड़ा फैसिनेट करता था, आज भी शायद ये गाड़ियां हमें फैसिनेट करती हैं, आज हमारे पास गाड़ियां हैं भी लेकिन जब भी नई गाड़ी में खरीदता हूँ मुझे वो फैसिनेशन देती है, मुझे अच्छा लगता है यार नई गाड़ी में बैठना, आज अगर मुझे नई गाड़ी दी जाए तो मुझे अच्छा लगता है, ये गाड़ी मुझे अच्छी लगी थी और मैंने इसके अंदर बैठ के इसकी ड्राइव करके चेक किया था, मुझे बहुत पसंद आई थी, दैट्स व्हाई मैंने अपनी बच्ची के लिए खरीदी। लेकिन इनको बच्चों को क्यों नहीं अच्छा लगता है नई गाड़ियों के अंदर बैठना। तो वहां मैं सोच रहा था कि आपको किसी भी लग्जरी को भी इंजॉय करने के लिए ना पहले गरीब होना बड़ा जरूरी है, अगर आप गरीब नहीं है ना तो इमारत को कभी इंजॉय नहीं कर सकते, अगर आप पैदाइशी अमीर हैं ना तो आप उस इमारत की अहमियत को, कदर मंजिलत को समझ नहीं सकते। और फिर मैंने दूसरा जो है वो उसका रुख ये निकाला कि शायद कि जितना इस बच्ची के बाप ने मेहनत करके यहां तक जहां तक ये पहुंचा है और इसके अंदर जो आग है ना, ना खुश होने वाली आग है, जो ना फैसिनेशन वाली जो आग है, नई से नई चीज हासिल करने की जो आग है, जो अभी बात कर रहे थे साजिद साहब कि हमें नई से नई चीज की तलाश होती है, शायद उस नई से नई चीज की तलाश ने आज इस शख्स को यहाँ इस मकाम पे पहुंचाया है कि उसके बच्चों के लिए फैसिनेशन खत्म हो चुकी है। और मैं 100% कह सकता हूँ, 1000% कह सकता हूँ कि वो बच्ची जो है वो कभी भी अपने बाप जितना ग्रो कभी भी नहीं कर पाएगी, कभी भी उस मकाम तक नहीं पहुंच पाएगी जिस मकाम तक उसका बाप पहुंचा है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीड ही नहीं है, उसके अंदर वो खुशी, वो चाहत ही नहीं है आगे बढ़ने की, या शायद वो उसको कोई चीज फैसिनेट नहीं करती, उसको कुछ नया नहीं चाहिए, क्योंकि उसने जो दुनिया में सब कुछ है वो देख लिया है, उससे आगे की तगोदो या तमन्ना उसके अंदर है ही नहीं है, बाकी ही नहीं है। सो ये जो चीज है ना हमारे अंदर ना खुश होने वाली या आगे से आगे चीज को हासिल करने वाली, शायद इसी चीज ने इंसान को तरक्की के इस दौर तक पहुंचाया है। अगर इंसान के अंदर ये चीज ना होती ना कि वो आगे से आगे बढ़े और नई से नई चीज को हासिल करे, एक मकाम से दूसरे मकाम पे पहुंचे, एक पोजीशन से दूसरे दूसरी पोजीशन पे पहुंचे, तो शायद वो इतनी मेहनत ना करता और इतनी तरक्की ना करता, और अगर इतनी तरक्की ना करता और जो शायद जिसने ये माइक्रोफोन बनाया, जिसने ये रेडियो बनाया, उसने अगर ये सोचा ना होता कि मेरी आवाज यहां से मीलों दूर तक सुनाई दी जा सके, या शायद वो इस बात पे इक्तफा करता कि चीख के मैं बोलूंगा और 500 बंदों को मेरी आवाज आ जाएगी, वो उस पे सेटिस्फाइड होता, तो शायद आज आप तक मेरी आवाज ना पहुंच पाती। तो उसके अंदर की जो ग्रीड थी कि आवाज को यहां से मीलों दूर तक पहुंचाना है और वहां तक मेरी आवाज जानी चाहिए, तो उस ग्रीड ने आज हमें तरक्की के इस मकाम तक पहुंचाया है कि जहां अभी आप सुकून से बैठ के मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूं, ना मुझे चीखना पड़ रहा है, ना आपको कान लगा के जोर से सुनना पड़ रहा है, आप अकेले बैठे हैं, आपके बिल्कुल बगल में आपका रेडियो पड़ा है, या आप अपने माइक्रोफोन के साथ, आप अपने हैंड फ्री के साथ अपना रेडियो सुन रहे हैं, आप गाड़ी में रेडियो सुन रहे हैं, जहां कहीं भी सुन रहे हैं। इस तरक्की के मकाम तक पहुंचाने में शायद उस शख्स की अनसेटिस्फेक्शन, या जो हम कह लें कि उसके अंदर की जो आग थी, आज हमें यहाँ तक पहुंचा पाई। तो ये जो आग है इसका बाकी रहना बहुत जरूरी है, जब तक ये आग आपके अंदर सुलगती रहती है आप आगे बढ़ते रहते हैं।

वो जो रास्ता था वफा का उसे मिटना ही था, दिल की बस्ती को बल आखिर यूं उजड़ना ही था। क्योंकि नई बस्ती ने जो बनना था, नए रास्ते ने जो बनना था, हमने चाहा था कि रुक जाए ये लम्हा कहीं, पर ये बादल तो हवाओं में बिखरना ही था। तेरे चेहरे की चमक, तेरी निगाहों का निखार, मेरे ख्वाबों की गली से यूं गुजरना ही था। राबता टूट भी जाए तो गिला किससे करें, एक दिन हमको जफाओं से संवरना ही था।

हमने सीने से लगाकर रखे जो दर्द के फूल, हमने सीने से लगाकर रखे जो दर्द के फूल, उनकी खुशबुओं को फिजाओं में उतरना ही था, उनकी खुशबुओं को फिजाओं में बिखरना ही था, उनकी खुशबुओं को फिजाओं में सिमटना ही था, वो जो रास्ता था वफा का उसे मिटना ही था, दिल की बस्ती को बाला आखिर यूं ही उजड़ना ही था। के भी आपके साथ हैं, एक बज चुका है और 8 अगस्त है, 2026 है और ये साथ आपके साथ है। मेरे साथ कुछ फेसबुक के ऊपर मौजूद दोस्त हैं और एजाज इकबाल साहब हैं, यूएसए से काउंटी से बात कर रहे हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम एजाज साहब, बहुत शुक्रिया, मुझे आप सुन रहे हैं नयारे गैर से। और फरा अफजल कुछ लिखती हैं।

0: फरा ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है, और फरा लिखती है कि आपको अब पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, पर हो सकता है कि उस बच्ची को अपने फादर से इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए हो रादर देन के मटेरियल सेटिस्फैक्शन। बाज़ दफ़ा इंसान नेमतों से बेजार हो जाता है, खासकर मादी नेमतों से। अगर उसके अंदर इमोशनल खला पैदा हो रहा हो तो फादर अगर पूछ के बच्ची की पसंद का तोहफा उसे दे देता तो वो बच्ची इमोशनली सेटिस्फाई हो जाती, वो बेहतर होता। जरूरी नहीं कि दौलत आपको समझ भी दे दे। फादर नीड टू अंडरस्टैंड दिस टू। फरा मैं इस बात पे बिल्कुल मैंने बात नहीं की कि उनको क्या देना चाहिए था क्या देना नहीं चाहिए था। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि बाज़ुकात आपको कुछ चीज़ें फैसिनेट नहीं करती, वो फैसिनेशन इसलिए नहीं करती कि आपके पास वो सब कुछ मौजूद होता है, और आपको हमेशा वो चीज़ फैसिनेट करती है जो आपके पास मौजूद नहीं होता। यस यू आर राइट, अगर आप इमोशनली आपके पास इमोशंस नहीं हैं, या आप उसको बाप का प्यार चाहिए था, या बाप को कुछ वक्त चाहिए, डेफिनेटली इतना कुछ हासिल करने के लिए बाप को दिन रात मेहनत करनी पड़ती होगी, बाप बिजी रहता होगा। उस फादर ने उसको शायद उस बच्ची को उतना वक्त ना दिया हो जितना वक्त वो चाहती हो। शायद वो चाहती हो कि बाप उसे उंगली से लगाकर कंधे पर बिठा के कहीं बाहर घुमाए। शायद वो बच्ची चाहती हो कि बाप उसे बाइक पे बिठा के कहीं घुमाए और बाप उसे ना घुमा पाता हो। शायद वो बच्ची उसको वो चाहती हो। मैं जैसे मैंने शुरू में बात की ना कि हमें कुछ चीज़ें जो हमारे पास मौजूद होती हैं, बचपन में मौजूद होती थी, वो हमें पसंद नहीं होती थी, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें वो पसंद होती हैं। जो चीज़ें बचपन में नहीं होती वो हमें बड़े होकर पसंद आती हैं। तो जो चीज़ भी इंसान के पास फरा नहीं है ना, चाहे वो मटेरियलिस्टिक है या चाहे वो मटेरियलिस्टिक नहीं भी है, या मटेरियलिस्टिक है और उसके अंदर कुछ चीज़ें लग्जरी हैं और कुछ बहुत ऑर्डिनरी हैं, तो बाज़ुकात आपको ऑर्डिनरी चीज़ें बहुत पसंद आना शुरू हो जाती हैं। मैंने ऐसे लाखों हज़ारों लोग देखे हैं कि जिनको साइकिलों का बहुत शौक है, जिनको बाइक्स का बहुत शौक है, उनके पास लग्जरी से लग्जरी गाड़ी होती है लेकिन वो बाइक पे घूमना बहुत पसंद करते हैं। उनके लिए बाइक फैसिनेशन होती है। और ऐसे करोड़ों अफराद हैं जिनके पास बाइक है और जिंदगी के सिर्फ एक ही सपना है, एक ही ख्वाब है, एक ही ख्वाहिश है कि मेरे पास गाड़ी हो और उस गाड़ी में मैं सेफ गुजरूं और मुझे बारिश धूप और इन चीजों से मैं बच पाऊं, अपने बच्चों को उसके अंदर बिठा सकूं। जो जिसके पास नहीं है ना फरा, बस उसकी फैसिनेशन है या उसकी ग्रीड है इंसान, चाहे वो चीज बड़ी है या छोटी है, उसको वो पसंद है जो उसके पास नहीं है। इंसान को रब ताला ने हमेशा नामुतमईन पैदा किया है, और ये नामुतमईन होना, अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम सारे के सारे सेटिस्फाइड हो जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नामुतमईन होना ही तरक्की का राज है। जिस दिन आप मुतमईन हो जाते हैं उस दिन आपकी तरक्की खत्म हो जाती है। ओके जी, लेट्स टेक अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ कौन है, कहाँ से हैं, ये क्या ख्याल रखते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: क्या हाल है मोहतरम, कैसे हैं आप?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गानी भाई आप सुनाएं, क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। कौन से भाई?
1: सर मैं लाहौर शादबाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, नहीं मैं कौन सा भाई बात कर रहा हूँ?
1: आप गानी भाई बात कर रहे हैं?
0: नहीं ये तो बात ना हुई ना फिर। अच्छा चले, गानी भाई समझ के बात कर लें। नवीद साहब
1: मुझे, जी जी सर रुका हूँ।
0: तो बताइए क्या कहने आए हैं?
1: सर मैं यही कहने आया हूँ, जब तक इंसान के पास सब कुछ ही होता ना, उसको किसी चीज की फिक्र नहीं होती कि यार ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है। जब वो कुछ भी नहीं ना पास होता तो मतलब सारी चीजों की फिक्र होती है उस इंसान को। बेसिकली याद ऐसे ही कोई छोटा सा सोच लें कि मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, मैं ना जब कमाता था खाता था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज होती थी पास, तब कदर नहीं थी कि यार कोई बात नहीं आज को माँ का इस्तेमाल कर लिया कल फिर आएगा। तो तब सर झूठ बोलने की वैसे बात नहीं होती कि बात यही आपको बताना चाह रहा हूँ। तब बहुत दोस्तों के फोन आते थे, एक बंद होता था दूसरा आता था, तीसरा बंद होता था दूसरा आता था। तो अभी ये बेसिकली तकरीबन डेढ़ पौने दो साल हो गए सर, मैं समझ लगे नजर मेरी बिल्कुल बंद हो गई है ना। तो अब वो वक्त याद आता है कि जब उस वक्त होते थे, लेकिन उस वक्त नहीं परवाह की, अगर उस वक्त की होती तो आज मेरे काम आए। जो उस वक्त फोन करते थे कॉल करते थे वो आज तो समझ लें कि पास भी बैठे हो तो वो दूर से निकल जाते हैं।
0: अच्छा ये आप ये ना नाम क्या बताया आपने?
1: सर मैं मोहम्मद नवीद बात कर
0: अच्छा
1: रहा हूँ शाहबाग से।
0: नवीद साहब, ऐसा होता है ना कि मैं कहता हूँ आप इसको नेगेटिव मत लिया करें। इंसान जो है ना, जब तक करामत रहता है ना, या कोई भी चीज़ करामत रहती है, उसकी अहमियत या उसकी कदर मंजिलत होती है, और जब वो बेकार हो जाए ना, तो उसकी कदर मंजिलत ख़त्म हो जाती है। चाहे आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि आपका टूथब्रश जो है वो जब ख़राब हो जाए, या उसके बाल जो जिससे आप अपने टीथ ब्रश करते हैं, क्या उसके बाद कभी आप उसको अपने पास रखते हैं? नहीं रखते ना। अगर आप उसको रखेंगे तो लोग आपको क्या समझेंगे, बेवकूफ़? तो डेफिनेटली इसी तरह इंसान भी है कि जब तक वो किसी के काम आता रहता है, तो वो उसके उसके वो वाकई उस दुनिया में करामत है। तो अपने आप को हमेशा करामत बनाएं। अगर आप देखें बात कर सक रहे हैं ना इस वक्त, तो
1: जी
0: ये बिल्कुल लैम एक्सक्यूज़ है कि आप करामत नहीं हो सकते। अगर आप चल फिर सकते हैं ना, तो लैम एक्सक्यूज़ है कि आप करामत नहीं हो सकते। अगर आप सांस ले रहे हैं ना, जब तक आप सांस ले रहे हैं, तब तक आप किसी के लिए करामत हो सकते हैं। वो रास्ता आपने तलाश करना है कि कैसे आप करामत हो सकते हैं। तो इसमें दूसरों का कसूर नहीं है, इसमें कसूर आपका है कि आप लोगों के लिए करामत नहीं रहे। ठीक है? तो
1: सर, सर मैं आपको मेरी बात बताऊं, मैं अपने दिल की बात आपको बताने लगा हूँ
0: जी
1: आज।
0: जी जी जी
1: मेरा अभी भी इसी हालत में भी मेरा दिल करता है यार, मुझे अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों अरबों खरबों वाली शुक्र आसमानों की जात,
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: मेरे हाथ पैर सलामत है। ठीक है, सोचने की बात है ना, सांस लेता हूँ, खाता पीता उठता बैठता चलता फिरता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा अभी भी दिल करता है कि मुझे कोई ना कोई ऐसी कोई नौकरी या कुछ भी मुझे मिले, लेकिन मैं जो अपने लिए जो अपना खर्चा चला सकूं अपने घर पर।
0: तो इसमें कोई कबाहत या कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप अपने इर्द गिर्द तलाश करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगी। दुनिया में लाखों करोड़ों खरबों अरबों इंसान हैं, सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, सबके सबको नौकरियां मिलती हैं, काम मिलता है। वक्त देर बदेर होती है, किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, लेकिन जो करना चाहे उसको जरूर मिलती है मेरे भाई।
1: वो कहते हैं ना कि जब हिम्मत करता है इंसान तो
0: हाँ
1: कुछ ना कुछ दस्ताने के लिए जाता है।
0: बिल्कुल, ऐसा आपने हिम्मत करते रहना। बाकी रिस्क का वादा तो अल्लाह ने कर रखा है। आप कौन है, या मैं कौन हूँ, या दूसरा इंसान कौन है जो किसी को रिस्क अता कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता।
1: कुछ भी नहीं, कुछ
0: रिस्क
1: भी
0: तो
1: नहीं।
0: उसने
1: अभी
0: अपने
1: मैं
0: हाथ
1: अपने
0: में
1: लोगों
0: रखा है
1: को
0: ना।
1: यही कहता हूँ कि भूखा वो मालिक है ना, वो भूखा खाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है।
0: बिल्कुल, तो आपने इस बात के ऊपर जो है ना बिल्कुल नहीं गौर करना, या आपने इस बात को बिल्कुल अपने दिल में नहीं रखना कि फलां शख्स मुझे बुलाता था, आज नहीं बुलाता, या फलां शख्स हमेशा के लिए जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहता मेरे भाई। आज जिस मैं माइक्रोफोन से आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, आज से 10 साल पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, इस माइक्रोफोन पे कोई और बात कर, मैं आज की अगर बात करूँ तो 2 घंटे पहले यहाँ पे कोई और बात कर रहा था, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे जाने के बाद कोई और बात करेगा। तो कोई भी चीज़ हमेशा के लिए बाकी नहीं रहती, हर चीज़ ने चेंज होना होता है, हर चीज़ ने बदलना होता है। आज इस सीट पे मैं बैठा हूँ, शायद आज से दस
1: लेकिन
0: साल
1: मैं
0: बाद
1: सर
0: मेरा
1: ये
0: नामो
1: लोगों को
0: निशान भी
1: ये
0: ना हो।
1: पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि अपनी आवाज के तवसुत से, लेकिन जहां से इंसान शुरू करे ना, कोई दुनिया का भी काम हो, जहां से इंसान शुरू करे उस चीज को इंसान को याद रखना चाहिए।
0: अच्छा, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। आपको पता है भूलने की जो सलाहियत है ना, चीजों को भूल जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कि अगर आप सोचें, अगर बचपन से आज तक जितनी भी बातें हुई हैं वो सारी अगर आपको याद रहती, तो आप आज शायद जिंदा ना रहते। आपकी जिंदगी में बहुत सारे दुख ऐसे हुए होंगे जिनको आप भूल चुके हैं। अगर वो दुख अगर आप आज आज आज आपको याद होते, तो शायद आज आप मेरे साथ अभी इस वक्त फोन पे बात ना कर पा रहे होते।
1: वो सर मैं उस कॉन्ट्रोवर्सी से बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो उस बात में आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन छोटने वाली बात है कि देखिए एक इंसान है, बिल्कुल करे मैं ही हूँ। ठीक है ना, मैं छोटे से कोई भी काम से मजदूरी शुरू करता हूँ, आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता मेहनत करके मुझे अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज अता करते हैं। ठीक है, सही है, लेकिन मुझे जहाँ से मैंने शुरू किया होगा, जो मैं करता होगा, मुझे उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ से मुझे ये रिजल्ट मिलना शुरू हुआ था, मैं उनकी कदर करूँ।
0: जी, आप याद
1: जी
0: जरूर रखिए उसको, उस बात को याद जरूर रखिए, और उसको अपने दिल के अंदर जरूर रखिए, क्योंकि वो आपको ज़मीन के साथ कनेक्ट रखेगा। लेकिन
1: ठीक
0: उसको
1: है सही
0: उतना ही याद रखिए। अगर आप उसके अंदर खो जाएंगे ना, या उसके साथ आप अटैच हो जाएंगे कि जहाँ से मैंने शुरू किया था वही सब कुछ है, या वही बाकी है, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है? उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, उसका भी ना एक पैमाना है, आपने उतना ही इस्तेमाल करना है, उतना ही अपने पास रखना है। ठीक है? याद भी उसकी उतनी ही रखनी। ठीक है? थैंक यू निवीद भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया।

वक्त हुआ चाहता है 1:11 मुझे आरजे के भी कहते हैं मनोमन इंटरनेशनल, आप सुन रहे हैं इस्लामाबाद के स्टूडियो से बिल्कुल बराह रास्त, और मैं आपका फीडबैक जो है वो प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ कॉल्स के जरिए, आपके कमेंट्स के जरिए, और मुझे कमेंट्स जो हैं वो फेसबुक पे मिल रहे हैं, और आज वो मैं कमेंट्स को थोड़ा ज़्यादा जो है वो तवज्जो दे रहा हूँ। तो माजबी मेरे साथ है, कहती है अम्मी की डेथ के बाद से तबीयत बेहतर नहीं, स्टिल सफरिंग फ्रॉम वर्टिगो। ओके, अल्लाह ताला आपकी वालिदा की जो है वो मगफरत करे, उनको जन्नतुल मकाम में आला मकाम अता करे। और वर्टिगो वाकई बहुत बहुत डेंजरस बीमारी है माजबी, और आई थिंक सो जहाँ तक मैं समझता हूँ वर्टिगो का इलाज जो है वो दैट इज एक्सरसाइज, फिजियो, आपको फिजियो करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए।

0: दिल में जो छुप के बैठ गई हैं उदासियां, उन उलझे हुए लम्हों को आवाज कौन दे, खामोशियों के शहर में आवाज कौन दे, भूले हुए खुलूस को परवाज कौन दे। हम तो दिए जला के हवाओं में रख गए, अब इस रोशनी को सबात कौन दे। माना कि मुस्कुराना हमारी आदत सही, पर अंदर के सिसकियों को मात कौन दे। माना कि मुस्कुराना हमारी आदत सही, पर अंदर की सिसकियों को मात कौन दे। हमने तो हर सफर में वफा का साथ दिया, अब बेवफाइयों को सजा का नाम कौन दे। हम तो दिए जला के हवाओं में रख गए, अब इस रोशनी को सबात कौन दे। आज 8 अगस्त है 2026 है, 1:37 है, आरजे के भी आपके साथ हैं।
1: तख्त हजार
0: ये आवाज आपको सुनाई दे रही है इस्लामाबाद के स्टूडियो से, एफएम 101 की फ्रीक्वेंसी से।
1: तमहीर से आल सदामा
0: 0551100101 है राबते का नंबर। फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एफएम 101 चैनल पाकिस्तान के सफ़े के ऊपर।

0: अरे निमरा सुनना क्या कहता है।
1: इन्हें अनोखा बेस बटाया,
0: अरसे बाद सुनने आई हूँ तो सुनना क्या कहता है।
1: अहमद

समय जावेद पाबंदी लग नहीं सकती। इजाजत देनी पड़ेगी। हम ना कह रहे हैं आज आप इतने दुखी।

बस फर्क सिर्फ इतना सा है। हफीफा भी लिखती हैं कि क्या कोई बात हुई है, आज मूड ऑफ लग रहा है। हफीफा बिल्कुल ऐसा नहीं है, आज मुझे अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है भाई।

0: ओके जनाब, वक्त बहुत कम है, 20 मिनट का साथ है आपका मेरे साथ, और कॉल करने वाले जो हजरात और ख़वातीन और हजरात हैं वो गुस्सा कर रहे हैं, कहते हैं कि भी कॉल नहीं चुक रहे हैं तू। कॉल उठाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए, आप खैरियत से हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए कि मतलब जब कॉल लेट हो जाती है तो ये क्या सीन है? शायद आपके तरफ लाइन से होती है ज्यादा, जैसे ऐसे होता है
0: कॉल ये सो जाती है तो फिर क्या होता है?
1: आपकी तरफ से जैसे मैं कॉल कर रही हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कॉल पिक हो गई है, तो वो कुछ सेकंड्स ऐसे चल रहे होते हैं पर आवाज नहीं आ रही होती।
0: अच्छा, नहीं नहीं, कॉल कॉल ऐसे पिक नहीं होती, जब आपको आवाज आएगी ना फिर कॉल पिक होती है। एक्चुअली इस वक्त हजारों लोग कॉल मिला रहे हैं और उस कॉल क्यू के अंदर चार लाइनें हैं, उन चार लाइनों के अंदर आप क्यू में लगी होती हैं और जिसकी कॉल कनेक्ट हो जाती है हो जाती है, जब कनेक्ट होती है तो फिर आपको आवाज आती है।
1: ठीक है,
0: अच्छा चलो चले, लग गई आपकी कॉल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बताइए क्या कहना चाहती हैं? चलो, आप जो सोच रही थी, मैंने आलती पालती मार के अपनी, मैं आलती पालती मार के अपनी कुर्सी पे बैठ गया हूँ, जो आप सोच रही थी बताइए, बस ये बह गया मैं, दस दस मुड़िए।
1: मैंने बताना था कि ना बचपन में जैसे मम्मा बोलती थी कि अब तुम लोग सो जाओ, ठीक है, जब वो सोने को बोलती थी तब नींद ही नहीं आती थी, और जब वो कहती थी जैसे कि काम बता दिया, जब वो पढ़ाई को कहती थी फिर दिल करता था सो जाऊं, तो इस तरह होता था। बट एक दफा ना मम्मा ना, मैं फोर्थ क्लास में थी शायद, तो मम्मा स्कूल में ना ले आई वो ना फीडर में ना चाय डाल के, फीडर में चाय डाल के ले आई, और सब मेरी फ्रेंड्स के सामने ना ब्रेक का टाइम था तो मुझे कहती है कि पियो, ठीक है, तो मुझे इतना बुरा लगा, मेरी शर्म आ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था दुनिया में कोई इज्जत ही नहीं मेरी बाकी रही। अच्छा। ये क्या सारी लड़कियां ना सुन क्या लग रहा था, मुझे देखती थी हाथ सुनी थी कि तुम फीडर में चाय पीती हो इतनी बड़ी हो के भी।
0: अच्छा।
1: और फिर एक लड़की बोली कोई बात नहीं, ऊपर से वो जो उसका निप्पल उतार के तो तुम ऐसे ही पी लो जैसे कप में पीते हैं, तो मुझे इतनी शर्म आई, और अब मैं याद करती हूँ इतनी हंसी आती है। अब हम चाय बना के और दूध तैयार करके लेके जा रहे होते हैं, बचपन में मम्मा देती थी।
0: अच्छा, नाम क्या आपका, आपका नाम क्या है, नाम नाम बताइए, नाम बताइए, नाम क्या आपका?
1: आपने ये बोला कि जो बातें मैंने की है वो आपने नहीं करनी, तो मैं अब क्या करूँ? एक अच्छा, और बात मैंने,
0: अच्छा ठीक है ठीक है, एक ही काफी है, नाम बताइए, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम बिस्मा है, मैंने होल से बात,
0: बिस्मा। अच्छा बिस्मा, ऐसा ना हमारी माए ना बेचारी बड़ी सादी है ना, उनको नहीं पता होता प्रोटोकॉल्स का, ठीक है। अब आपकी जब आप, जब आप माँ बनेगी ना, अल्लाह ताला आपको माँ बनाए, तो जब आप माँ बनेगी ना तो आपके बच्चों का प्रोटोकॉल आपको नहीं पता होगा, आप उनके स्कूल में कुछ इस तरह की चीज कर लेंगी ना, उनको लगेगा मम्मा आपको तो पता ही नहीं है, मम्मा क्या करती है, मम्मा ये प्रोटोकॉल नहीं होते, ठीक है। तो वो हर जनरेशन में गैप जरूर होता है। सो आपकी अम्मा का प्यार था वो फीडर में लेके गई आपके लिए।
1: मुझे शर्म आई सब लड़कियों के सामने, उन्होंने मेरा इतना शुगर भी बनाया कि ये फीडर में ना चाय पीती थी बड़ी। अब मुझे याद आता है हंसी आती है उस टाइम, अच्छा ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं रही, मैं तो बस ऐसे ही।
0: अच्छा बिस्मा,
1: खत्म हो गई है, वैल्यू ही खत्म हो गई है।
0: अच्छा बिस्मा, इस किस्से पे ना मुझे अपना,
1: जिस तरह कजन होते हैं हमारे ना, उनको ना जैसे टिकटॉक आईडी है, इंस्टा आईडी है, जैसे मेरी आईडी होती है कोई और नेम थी है वैसे, उनको क्या पता कि मेरी मैं हूँ, इस तरह बात करूँ ना तो मतलब फौरन अप्लाई करेंगे, लाइक करोगे, थैंक्स बोलेंगे, तो मैं कहती हूँ लाना तो तुम लोगों के थैंक्स से, अगर मैं तुम लोगों को बता दूँ मैं कौन हूँ,
0: तुम लोगों ने मुड़ के मुझ पे लाना डाल देनी है।
1: बात ही ना करो, बात ही ना करो, तुम लोग आ गया है इनकी, इस तरह बात करनी पड़ती है इनसे, डायरेक्ट बात करो तो उनका दिल ही नहीं करता, उनको सुबह मैसेज करो तो अगले दिन जाके रिप्लाई करते हैं और कहते हैं हम तो वो मीटिंग में थे, हम बिजी थे, हम तो ये, और वैसे उनकी ना कोई पोस्ट पे कमेंट करो ना तो फौरन रिप्लाई, थैंक्स लानत।
0: चलो बिस्मा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखो अपना। बिस्मा राज खोल रही थी जी, मैंने कहा ज्यादा ना खोल देंगे। यार गाना बहुत मजे का है, मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी कॉल सुनूं, लेकिन गाना बहुत मजे का है। आहा, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। या कोई बात नहीं कॉलर्स, मैं ना 5 मिनट मजीद बढ़ा लूंगा, लेकिन ये गाना सुनते हैं प्रोग्राम में, 5 मिनट और बढ़ाई जी।

0: कागजी फूल जैसे चेहरे पर नक्श हैरत उभारता क्या है, दिल जो टूटा हो तो शोर क्यों होगा, शीशा आरजू था टूट गया। दिल जो टूटा तो शोर क्यों होगा, शीशाए आरजू था टूट गया। हम भी कितने अजीब हैं कि सदा बेवफा का शुमार करते हैं, जिंदगी भी अजीब पहेली है जिसका हल ढूंढते हुए ही सब कुछ गुजार देते हैं। कागजी फूल जैसे चेहरे पर नक्श हैरत उभारता क्या है। वनुम इंटरनेशनल आपके साथ है जी, की भी मौजूद और 1:51 है, 8 अगस्त है, 2026 है और कॉलर मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है? कौन बात कर रहा है, कहाँ से? इरम, इरम थोड़ा सा जाग जाए ना, ऐसे अगर आप बात करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ आवाज ठीक आ रही, थोड़ा सा जाग जाए, सोई भी जागी आप?
1: सर जाग रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे, कॉल मिला रहे हैं सबसे।
0: अच्छा तो कॉल मिलाते मिलाते नींद आ गई?
1: सर बस ऐसी आवाज थोड़ी सी, और सारे सो रहे हैं ना इसीलिए।
0: अच्छा तो बताएं इरम क्या करती हैं आप?
1: सर कुछ नहीं करते, बस
0: प्रोग्राम सुनती हैं
1: जी।
0: तो क्या क्या अच्छा लगा आपको और क्या कहना चाहती हैं प्रोग्राम में?
1: सर आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा, और टॉपिक में यही कहना चाहिए कि इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, जो मिल जाए शुक्र अदा करना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक।
1: और सर आपने बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की सोच मिल जाती है, भी जो आपने कहा था ना कि वो अगर दर्द ना हो तो कुछ कैसा नहीं होता, बहुत अच्छी बात की सर आपने।
0: अरे वाह,
1: तो सर सुनने वाले को शाम शाम से शांति की दुआ सब सुनाते को, हमारी आरजी हमारी दोस्त हमारी दोस्त प्यारी अनिला को भी सलाम। और सर आपकी इजाजत होते थी शायरी
0: जी जी सुनाइए।
1: शख्स के हाथ में था मेरा खिलना भी मुरझाना भी, रोता था तो रात उधर जाती, वो हंसता तो दिन बन जाता। मेरे से रास्ते में हूँ मुमकिन हो कि उससे रास्ता हो जाए, मेरे से रास्ते में हूँ कि मुमकिन हो उससे रास्ता हो जाए, मुझे हाथ उठाने पड़ते तब जाके वो कॉल उठा जाए।
0: वाह वाह कमाल, थैंक यू इरम, बहुत शुक्रिया अपना ढेर सारा, बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉलर।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम, क्या हाल है?
2: क्या हाल है?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्लूर हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर से।
0: अरे वाह हाशमी साहब, ऐसे जागती फड़फड़ाती चिलचिलाती कहकहाती आवाज,
2: आपने कॉल कर दी एक्टिव होके करें, जिस तरह वो लड़की नहीं सोई सोई सी जैसे, जिसमें क्या नाम था
0: इरम बेचारी, वो बहुत देर से कॉले में लाती रही है ना इसलिए।
2: तो वो शहजाद साहब की कॉल में मेरा नाम आया, मैं मूड नहीं था, जो जरा ना टेम्परेचर था।
0: अच्छा
2: तो आज टॉपिक पे अच्छी बात हो गई, रिवाज गार्डन का जिक्र आया तो मैंने कहा मैं अपनी हाजिरी लगा लूं
0: जी।
2: और जाते जाते फैज साहब का एक कथा आपकी नजर
0: जी,
2: क्योंकि टॉपिक पे काफी बात हो चुकी है
0: जी।
2: रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में होने से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए।
0: अल्लाह कमाल सर कमाल, बहुत शुक्रिया जी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बुरी लगती है मुझे ये आवाज, टिंग टिंग टिंग। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम, उस्मान बोल रहा हूं, आपको मैंने सॉन्ग बोला था।
0: हां उस्मान, सॉन्ग लगाया मैंने, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम नेक्स्ट कॉलर।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
0: क्या हाल है मोहतरम, कैसे हैं
4: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। नजीर क्यानी बोल रहा हूं
0: जी। क्यानी साहब क्या कहने आए हैं आज?
4: कहने तो क्या बस, दो बड़ी तरफ
0: आवाज कट गई,
4: फिर कर रहे हैं वैसे जोगी से नाल।
0: आवाज आवाज खराब हो गई है कैनी साहब आपकी।
4: ओहो ये तो चाहिए
0: जी,
4: अभी जगह तो वही है तो काम भी तो वही अच्छे से चल रहे हैं।
0: नहीं कैनी साहब आवाज आवाज खराब हो गई है आपकी।
4: फिर
0: अच्छा आप दोबारा कॉल कर लेंगे कैनी साहब, मैं आपकी कॉल लेता
4: हूँ। हाँ,
0: ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
5: अमीर गुलार,
0: अरे आज तो आगे पीछे आए हैं, कभी कियानी साहब कभी अमीर गुल साहब, हैं आगे पीछे लाइन लगा के रखी थी।
5: ऐसे होता है सर
0: जी। तो अमीर गुल साहब, वैसे आप बड़े हैं कियानी साहब बड़े हैं?
5: अब मुझे उनकी उम्र का अंदाजा नहीं है।
0: अच्छा, आपको उनकी उम्र का अंदाजा नहीं, चलें जो भी है वैसे। लेकिन लेकिन टेलीफोन कॉल ने कहा कि पहले हमीद गुल साहब बात करेंगे फिर कियानी साहब बात करेंगे।
5: अब ये तो टेलीफोन को ही पता होगा।
0: तो बताइए हमीद गुल साहब, आज क्या कहने हैं?
5: मैं थोड़ा सा ना वो बातें सुन रहा था कि आपने शुरू में एक संगीत बांधी प्याज की, फिर पानी की, फिर रंगों की, फिर उसमें आपने किस्सा भी एक वाक्य भी शेयर किया
0: जी।
5: तो मुझे लगा कि ये जमाना खुशी के मायने बदल गए। तो मुझे जो अंदाजा हुआ इस बात
0: जी,
5: ये मतलब मैंने देखा है, ये आप जो आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे अपनी जगह।
0: मालूकात
5: इंसान के पास सब कुछ होता है, उससे उसकी आगे की तलब नहीं होती। मालूमों के पास कुछ भी नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि ताल्लुक जो है उसका वो तलब से है। जब तक आप देखें आप जिद्दोजहद करते हैं उसके लिए, और एक काम है आपका एक अहम है उसमें आप पूरे उतर गए हैं, तो फिर उसके बाद। लेकिन आज की जो जनरेशन है उनको सब कुछ माँ बाप की तरफ से लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, तो उनके पास फिर वो करने को कुछ नहीं होता। तो ईश्वर साहब से किसी ने पूछा, ईश्वर अहमद साहब से, दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? तो उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा काम जो है ना वो मसरूफियत है। तो शायद मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत सारी खुद को ना, यदि हमारे बच्चों ने या हमसे जो थोड़ी उम्र में छोटे हैं, ये जो डी जनरेशन है, अभी डी नहीं कहना चाहिए कि तो अल्फा जनरेशन होगी, इन इनकी सोच का मयार जो है वो हमारी समझ में आने वाला नहीं है इसका।
0: सही,
5: ये क्या चाह रहे हैं कि उसकी बड़ी वजह, उसके उसकी वजह हम ही हैं। हम से मुराद तमाम वालदैन, ये हमने शायद बच्चों को वो नहीं सिखाया जो हमें एक सिखाया गया था। ये तजुब का शिकार है।
0: सही,
5: कहीं ना कहीं ये मैं देखा है मैंने।
0: नहीं हमीद गुल साहब, हमीद गुल साहब, हर जनरेशन के ना अपने गुड्स एंड बैड्स हैं, और मैं तो शायद आपकी इस बात से थोड़ा इतफाक इसलिए नहीं करूँगा कि हर इन्वायरमेंट के अंदर या हर जगह के ऊपर ना उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और शायद कि आज की जो जनरेशन है उसकी इस इन्वायरमेंट और इस जगह के ऊपर ना शायद यही ज़रूरियात है, हमें ऑड लग रही हैं। आप जब आप थे ना जेंजी, ठीक है, जब आप जवान थे, तो आपके बुजुर्गों को शायद बहुत चीज़ें अजीब लगी होंगी, या मेरे बुजुर्गों को बहुत चीज़ें अजीब लगती थी जब मैं कुछ चेंजेस की बात करता था। आज शायद मुझे अपने से जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो अजीब लग रही होगी। तो जब भी आप
5: की बात नहीं कर रहा
0: जी जी,
5: मैं तो तब्दीली जो है वो हर आने वाला वक्त पहले वक्त से बेहतर होता है, वो मैं उस बात को समझता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जितने जितना एतमाद हम में था उससे ज्यादा एतमाद आज की जनरेशन।
0: जी बिल्कुल
5: ठीक है
0: जी।
5: लेकिन वो जैसे कहते हैं ना ओवर, थोड़े से ओवर है, तो मतलब वो बड़ा नुकसान दे
0: एक्चुअली। उसकी रीजन है अमीर गुल साहब, उसकी रीजन, आई एम सॉरी टू कट यू, रीजन ये है ना कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जो है वो रीवैम्प हुई है, और जो टेक्नोलॉजी है, जो एरा आज की जनरेशन ने देखा है ना, वो शायद आज से छह सदियां या सात सदियां पहले ट्रांजिशन जो थी ना, तब्दीली, वो बहुत आराम से स्लोली ग्रेजुअली हो रही थी। इस जनरेशन ने तब्दीली बहुत तेजी से देखी है, तो शायद वो उसको एब्जॉर्ब करने में उसको वक्त लग रहा है।
5: मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो तो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो।
0: जी जी जी बिल्कुल एग्रीड एग्रीड एग्रीड एग्रीड, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ।
5: जाते जाते एक शेर सुनाते हैं आपको, जमाली के एक शेर है
0: जी जी,
5: क्या बहुत खूबसूरत शेर है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। शायद मैं अपना मजमून जो आपसे डिस्कशन हो रही जिसको इस बात पर खत्म कर देंगे कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी।
0: वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। हमीद गुल साहब आते हैं जी प्रोग्राम में, चार चांद लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉलर है।
6: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: अरे क्यानी साहब, आज तो बस मैं कहूँ क्या मांगू मैं रब से, मुझे मिल जाता है ना।
6: वो क्यों है जी?
0: कि पहले आप आए और फिर हमीद गुल साहब और फिर से आप आ गए, है ना
6: जी। ये तो वाकई बात सही,
0: कमाल हो गया ना आज।
6: तो मैं सोच रहा था कि मुश्किल है, टाइम भी थोड़ा है और कॉल लगनी भी मुश्किल है।
0: हाँ।
6: लेकिन चलो लग गई कॉल, पता नहीं ये हमीद गुल के तफैल के साथ ही लगी है, उनके तफैल से ही लगी है। उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास वो आए, उनके पास मैं फिर आ गया।
0: हाँ जी हाँ जी, तो बताइए जी कैनी साहब क्या कहना चाहेंगे।
6: मेरा ख्याल है टाइम भी थोड़ा है, मैं चंद एक मेरे दोस्त हैं आरजे प्रेजेंटर हैं, बड़े पुराने 20-25 साल से।
0: अच्छा।
6: हैदर फारूक साहब उनका नाम है, शायद आपने सुना हो,
0: शायर
6: भी हैं
0: जी। अच्छा।
6: एक दो किताबें भी लिखी हैं, तो उन्होंने गजल लिखी है, उसके दो शेर में आपको।
0: जी जी जी जी जी।
6: लेकिन यह है कि नेक्स्ट जो मैं वो फिर आपकी गजल सुना दीजिएगा, ये उस्ताद हामिद अली खान साहब का ही है।
0: अच्छा जी।
6: कहते हैं कि मुझे बड़ी अच्छी लगी उनके पहले ही जो है ना शेर जो है।
0: अच्छा जी।
6: यही बात है, अब मैं क्या दो घंटे से
0: कोई बात
6: लगातार बात को सुन रहा हूँ।
0: कोई बात नहीं सब,
6: आप कह रहे हो मुझे
0: आप लिख लिया करें चीजें ना, आप लिख लिया करें,
6: ये बात सही है।
0: हाँ, आप लिख लिया करें।
6: नहीं, ये पता नहीं कितनी पुरानी मैंने ये गजल है और दिन में कई बार मैं इसे याद भी करता हूँ, लेकिन दो शेर मैंने याद किए कि मैंने कहा भी मैं करूँगा तेजी से बात तो फिर सुनाऊंगा, लेकिन देख लीजिए फिर। हाँ, उम्रें लग जाती हैं प्यारे, उम्रें लग जाती हैं प्यारे अपना आप बताने में।
0: अच्छा।
6: उम्रें लग जाती हैं प्यारे अपना आप बताने में, तूने थोड़ी जल्दी की है मुझको छोड़ के जाने।
0: आह बाजी वाह,
6: तूने थोड़ी जल्दी की है मुझको छोड़ के जाने।
0: वाह
6: कमाल। हर एक से ये मेर मोहब्बत तुझको तन्हा कर देगी। हर एक से ये मेर मोहब्बत तुझको तन्हा कर देगी, देख लकीरें मिट जाती हैं सबसे हाथ मिलाने में।
0: वाह।
6: तूने थोड़ी जल्दी की है मुझको छोड़ के जाने।
0: वाह वाह।
6: नेक्स्ट जो है मैं आपसे मैं ये सुनूंगा हामिद, उस्ताद हामिद अली की आवाज में।
0: जी जी जरूर सर। कैनी साहब बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।
6: बहुत शुक्रिया जी,
0: अल्लाह हाफिज। वक्त हुआ चाहता है 2:03, वक्त बहुत कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
7: पर भाई मैं लाहौर से साजिदा बात कर रही हूं।
0: अरे साजिदा कैसी हैं आप?
7: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ साजिदा, वक्त बहुत कम है, कहिए क्या कहने आई हैं।
7: हाँ जी शुक्र है, एंड में तो कॉल मिल गई, मैं कब से ट्राई कर रही थी लेकिन अब मिल गई।
0: जी जी।
7: जबरदस्त शो और आप जैसे ना आपका मूड ऑफ ऑफ है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं,
7: जैसे वो चंचल होती है ना पहले, वो आज नहीं है
0: यार। आज ना मैं चाह रहा था कि मैं नाइट वाला प्रोग्राम करूँ ना, कुछ चेंज होना चाहिए ना, अब रोजाना चल चल चल चल चुल चुल वाला प्रोग्राम अगर हो तो
7: ठीक है। शायद इनके पता नहीं आपके पुराने कॉलर नहीं है, काफी नहीं आ रहे, तो वजह से भी आप हो।
0: आज मुझे बड़ा मजा आया वैसे। अच्छा, आज के प्रोग्राम का मुझे अगर मैं कहूँ ना कि मेरे पिछले मंथ के सबसे बेस्ट प्रोग्राम कौन सा था, तो वो आज है।
7: अच्छा, तो अनीना जी भी नहीं आई, काफी आपके कॉलर हैं पुराने वो भी नहीं आए, और अगर अनीला से जी सुन रही है तो लाजमन आए।
0: अनीला कॉल मिला रही होगी, उस बेचारे की कॉल लगी नहीं होगी अभी तक ना, आज कॉलें बहुत आ रही हैं।
7: बिल्कुल। और जबरदस्त शो है आपका, बहुत अच्छा मजा आ रहा है, और मैं आपसे यही कहूंगी जो
0: जी
7: हम भूल यही ना टॉपिक भूल जाते हैं।
0: जी जी जी भूल जाए, बस भूल जाए, आप भूल गई हैं, आप भूल जाए ठीक है।
7: नहीं आप दोबारा रिपीट
0: कर दो, कॉल मिलाने में ना साजिदा, नहीं साजिदा अच्छी बात है आप भूल गई हैं, तो मेरे पास वक्त कम है ना, अगले प्रोग्राम में पूछूंगा ठीक है।
7: चलिए आप बता दे, रिपीट कर दे, तो मैं बता दूंगी।
0: बस यही बात है ना कि आप भूल जाए, अल्लाह करे आप भूल जाए।
7: ना करे भाई।
0: चलो अपना ख्याल रखो साजिदा, बहुत बहुत ढेर सारा, और सो जाओ ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। साजिदा जी लाहौर से मेरे साथ वक्त बहुत कम है जनाब, जो भी आए थोड़ा कम बात करने की कोशिश करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको मौका दूं लेकिन बात कम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
8: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
8: आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी, क्या नाम है आपका?
8: मादी।
0: क्या नाम है?
8: मादी।
0: मादी
8: नहीं, मादी।
0: मोती।
8: मादी।
0: मासी
8: जी।
0: अच्छा, मासी बात कर रही है?
8: जी, मंडी गावलदीन से।
0: ठीक है मासी, अपना ख्याल रखना और शो सुनती रहना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। फाका हो तो बताना। मानव इंटरनेशनल आप सुन रहे थे जी, मुझे आरजे के भी कहते हैं। वक्त हुआ चाहता है 2:06 और आज 8 अगस्त है 2026 है और गुफ्तगू आपके साथ रही मेरी 2 घंटे की। कोशिश की कि आज का प्रोग्राम आपके साथ अच्छा रहे और वाकई में आज का प्रोग्राम अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा आप सबसे गुफ्तगू करके। कोशिश में कर रहा हूँ कि मैं आप सारे लोगों को मौका दे दूँ कि जो लोग कॉल मिलाते रहे उनको प्रोग्राम कैसा बना लूँ। जो भी मेरे साथ आ रहा है अभी ज़रा जल्दी जल्दी आइएगा और कम कम बात कीजिएगा ताकि मैं प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकूँ। कॉलर है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
9: जी, अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
9: सर लाहौर से मारिया शहजादी कर रही हूँ।
0: जी मारिया शहजादी, कहिए क्या कहने आई हैं?
9: सर कुछ छोटे टॉपिक, और मैं टॉपिक के ऊपर कहना चाहूंगी कि जब हम मेहनत करके कोई चीज हासिल करते हैं ना, तो एहसास भी हमें उसी का होता है जो हमें मेहनत करे बगैर मिल जाती है। तो फिर कुछ ही दिन बाद उससे दिल भी भर जाता है। दूसरी चीज ये है कि अगर सारा कुछ हमें मिल जाए तो फिर हमारे दिल में एहसास कैसे रहेगा एक दूसरे का। इसलिए जो है उस पर भी शुक्र अदा करें और जो नहीं है उससे भी शुक्र अदा करें।
0: बहुत खूब बात, थैंक यू सो मच मारिया, अपना ढेर सारा बहुत सारा ख्याल रखना। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
10: सर सबसे आपकी बात आया है
0: जी।
10: सर टाइम तो खत्म हो गया, बात तो कुछ नहीं हो सकती, तो एक शेर है
0: जी जी,
10: वो है कि मोम की सीढ़ी पे चढ़ के सो रहे थे आसमां। मोम की सीढ़ी पे चढ़ के सो रहे थे आसमां, मगर हुस्न वालों को ये कोशिश बहुत।
0: वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया आतिफ अब्बासी, थैंक यू, बाय बाय। फरा अफजल मेरे साथ रही जी प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच फरा अफजल फॉर योर काउंटलेस फीडबैक। कामिल इवान मेरे साथ आए हैं जी, थैंक यू सो मच कामिल।

0: चौधरी मीना गुजर मेरे साथ रही, थैंक यू सो मच। कामिल एवान मेरे साथ रहे, तायर अजीज मेरे साथ रही, फातिमा सैयदा मेरे साथ रही, हाजरा बतूल रही, सुमित कुमार रहे मेरे साथ, अली अब्बासी थे, सोनी थी, मारिया थी और फजल खान काकड़ थे, दियावान थी, बख्तावर कियानी थी, जन्नत सदीम थी, ताहिरा मसूद थी, बिलाल थे, जिम्मी थे, नज़ीर खोसो थे, आशिक खासखेली थे, फैसल अब्बास मेरे साथ रहे, नौशीन रशीद मेरे साथ रहीं, जिशान अली रही, माजबी रहीं, कोमल ईमान मेरे साथ रहीं, ईमान अली मेरे साथ रहीं, हरम अब्बासी मेरे साथ रहीं, इजाज इकबाल साहब मेरे साथ रहे यूएसए से, जुबैर अशरफ मेरे साथ सियालकोट से आए, साइम तबस्सुम मेरे साथ रहे, हफीफा नूर मेरे साथ रही जी थ्रू आउट द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच हफीफा नूर फॉर योर फीडबैक। सबिया जावेद मेरे साथ रही, आमिना सरवर रही, कोमल रही मेरे साथ, आसमा रही, हादिया मेरे साथ रही, निदा फातिमा रही, बीनेश रही, इरम चौहान रही, अक्सा रही, बिस्मा बट रही, सुमैरा रावलपिंडी से रही, हानिया खान रही कश्मीर से, बाबर मेरे साथ रहे जी गुजरांवाला से, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जिन जिन लोगों का मैं नाम शामिल कर सका हूँ और उनका भी बहुत शुक्रिया जिनके नाम मैं शामिल नहीं कर सका, उनसे मैं माजत खा हूँ जी कि अगर किसी का नाम मिस हो गया या किसी की कॉल मिस हो गई, किसी से बात नहीं हो पाई तो माफ़ी चाहता हूँ, दरगुजर फरमाइएगा। दौरान गुफ्तगु दौरान बातचीत किसी के कान को किसी के दिल को कोई बात गिरा गुजरी है तो माफ़ी चाहता हूँ, रब के हुजूर भी माफ़ी खासगार हूँ, आपके हुजूर भी माफ़ी खासगार हूँ, इंसान हूँ, खताकार हूँ, खताओं का पुतला हूँ, खताएं सरजद हो जाती हैं तो माफ़ कीजिएगा। डबल 471 पे अब्दुल नूर हाशमी रवाज गार्डन से रहे, थैंक यू सो मच अब्दुल नूर हाशमी यहाँ मैसेज करने के लिए। होपफुली आज की ये दो घंटे की नशिस्त आपके साथ आपको आपको आपने एंजॉय की होगी, आपका ये वक्त अच्छा गुजरा होगा, आपने कुछ जरूर सीखा होगा, मुझे बहुत कुछ आपने सिखलाया, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि रात के इस पहर आप मुझे सुनते हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, आपका यही प्यार यही मोहब्बत मुझे खींच के यहाँ लाती है। प्रोग्राम में अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, प्रोग्राम को बेहतर करना चाहते हैं, प्रोग्राम में चाहते हैं कि कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए, कुछ आपके पास मशवरा है या कोई चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हैं कि प्रोग्राम का हिस्सा बनाई जाए तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आप लिखेंगे अपने इंस्टाग्राम पे KB.BAIG, मैं आपको मिल जाऊंगा, सब बातें आप कह सकते हैं, सब मौजूआत आप बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम में कोई मौजू बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अगले जुम्मे तक दीजिए केबी को इजाजत, केबी जाने वाला है इस उम्मीद के साथ कि आप केबी को याद रखेंगे, एक हफ्ते के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी इसी स्टेशन पे इसी वक्त कुछ नई बातों के साथ, नई मोहब्बतों के साथ,
1: कुछ ना सुनो तो बेहतर,
0: अभी कुछ अगर सुना है या नहीं सुना तो कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद फिर बहुत कुछ सुनाएंगे आपको, बहुत कुछ सुनेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए केबी को इजाजत, केबी साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगेबान, बाय बाय, टाटा।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।